मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर, एफएम पर 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आज बुधवार है, शक्त संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 17 जून 2026 ईस्वी। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय प्रातः की 5:55 हुए हैं। अब हमारी आज की ये सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में, जिसे हम आकाशवाणी की दिल्ली के अंदर से रिले करेंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में कल G7 शिखर सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित किया। इसका विषय था नई साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का निर्माण। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सत्र में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन, वैश्विक बायोफ्यूल गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम अभियान शामिल है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। G7 देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वादा किया। G7 ने कैंसर का इलाज ढूंढने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। श्री शाह ने अधिकारियों को 5 जेजे क्लस्टर के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी और इनमें कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपये तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नशा मुक्त भारत अभियान NMBA के अंतर्गत नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान डॉ. वीरेंद्र कुमार नशा मुक्ति मित्र के लिए पर्सनल डैशबोर्ड और NMBA पर आधारित एक लघु फिल्म सहित कई प्रमुख पहल का भी अनावरण करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज

वंदना कार्यक्रम के आरंभ में आपने लता मंगेशकर को सुना, आइए अब सुने अनूप जलोटा की आवाज में ये भक्ति रचना।

भक्ति संगीत का वंदना कार्यक्रम। इस समय आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। आइए अब सुने अशोक सनहोत्रा की आवाज में भक्ति रचना।

0: अभी आप भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन, वाचक स्वर प्रेम सिंह गोदारा का है।
1: जब हम सांस पर ध्यान देते हैं तो सांस पर ध्यान देने मात्र से ही अपने आप समता के भाव का दृष्टिकोण उत्पन्न होने लगता है। जितने भी इंद्रिय जनित अनुभव हैं उनमें प्रिय या अप्रिय होने की संभावना होती है। कोई दृश्य, कोई रूप, कोई रंग, कोई आकृति, कोई व्यक्ति, कोई सुगंध, कोई स्पर्श, कोई ध्वनि, कोई जीभ का स्वाद और इसी तरह से मन में उठने वाले विचार हमें प्रिय लग सकते हैं, वो हमें आकर्षक लग सकते हैं, वो सुहाने भी लग सकते हैं। उनके प्रति हमारे भीतर मोह जागता है और हम मोहित हो जाते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें सुख देती प्रतीत होती हैं और जाने अनजाने में हमारे भीतर एक लालसा पैदा होती है कि ये सब चीज़ें बनी रहें। किसी प्रिय चीज़ के बने रहने की लालसा को ही राग कहते हैं। इसी तरह से अप्रिय चीज़ों के प्रति हमारे भीतर एक लालसा बनी रहती है कि ये हट जाएं, ये मिट जाएं, और इसी को ही द्वेष कहते हैं। परंतु हमारी सांस के प्रति हमारा दृष्टिकोण न तो राग पैदा करने वाला होता है और न ही द्वेष पैदा करने वाला होता है। सांस अपने आप आती है और अपने आप ही जाती है। सांस पर ध्यान करने का जब हमारा थोड़ा अभ्यास हो जाता है तो हम शरीर पर होने वाले अनुभवों को जानने का प्रयास करते हैं। जो कुछ भी हमारे शरीर में जो हमें विदित होता है, जो हमें ज्ञात होता है, एक समय उसे वेदना कहा जाता था। आजकल वेदना का अर्थ केवल पीड़ा रह गया है, लेकिन वेदना का वास्तविक अर्थ है जो हमें अपनी अनुभूति से अपने ही शरीर में जो पता चल रहा है, जो जाना जा रहा है, चाहे वो जलन के रूप में हो, भारीपन के रूप में हो, झनझनाहट के रूप में हो, किसी भी रूप में क्यों न हो, हम उसे वेदना कहेंगे। इन वेदनाओं का हमारे मन में उठने वाले भावों के साथ सीधा संबंध होता है। जब भी हमारे शरीर के भीतर बाहर कोई घटना घटित होती है, घटना घटित होते ही हमें ज्ञात होता है, हम जानते हैं कि कुछ हुआ, और पहचानते ही इसका हमारे शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है, और उस प्रभाव के फलस्वरूप हमारी इस 3.5 हाथ की काया में कोई न कोई वेदना प्रकट होती है, और उस वेदना के फलस्वरूप मन में कोई भाव या विचार उठते हैं। ये चारों घटनाएं जानना, पहचानना, शरीर पर प्रभाव यानी वेदना, मन में उठने वाले विचार या भाव इतनी तीव्र गति से होते हैं कि हमें केवल चौथी घटना ही मालूम पड़ती है। पहली तीनों की हमसे अनजाने में ही अवहेलना हो जाती है। जैसे जैसे हम ध्यान में पुष्ट होते जाते हैं तो धीरे धीरे हमारे मन की गति धीमी होती जाती है और हमें इन चारों परिस्थितियों का आभास होने लगता है। दुख, भय, क्रोध, आवेश, संताप, ये सब हमारी शारीरिक वेदनाओं से ही उत्पन्न होते हैं। यदि हम अपनी वेदनाओं को समता भाव से देखने की क्षमता पैदा कर लेते हैं तो वो वेदना अपने आप शांत हो जाती है, चाहे वो सुखद वेदना हो, चाहे वो दुखद वेदना हो। जब सुखद वेदना शांत हुई तो राग गया, और जब दुखद वेदना शांत हुई तो द्वेष भी गया। ऐसा अनुभव किया गया है कि आनंददायक सुखद वेदना को साक्षी भाव से देखते रहने से उस आनंद से तृप्ति प्राप्त हो जाती है। तृप्ति प्राप्त होने से उसके प्रति राग भी मिट जाता है। जैसे भोजन करते समय दृष्टा भाव हो तो थोड़े से भोजन से ही पूर्ण तृप्ति प्राप्त हो जाती है और अत्यधिक स्वादिष्ट भोजन की वासना भी मिट जाती है। इस तरह से हम अपनी वेदनाओं का साक्षी भाव से अवलोकन करके राग और द्वेष दोनों से ही मुक्त हो जाते हैं। चित्त की एक ऐसी स्थिति जो नितांत निर्मल है में हम अपने आप को स्थित कर पाते हैं।
0: ये था आज का चिंतन।

0: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। किसान भाइयों के लिए प्रातः है 7:10 पर। खेतीहर वास्ते कार्यक्रम में जानकारी का विषय रहेगा चारे के लिए लोबिया की बुआई। दिन में 12:50 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेत खलिहान। लोक संगीत के कार्यक्रम मरुमंगल में 9:10 पर कलाकार होंगे तेज प्रकाश मेहरड़ा। मानस गान सुनेगा 7:20 पर। इसमें आज आप सुनेंगे भाग संख्या 277। कार्यक्रम सुप्रभात का समय रहेगा 7:30 पर। इसमें आज विषय रहेंगे संगीत से मिलती है मन को खुशियां, जीवन में सफलता और देशी खान पान। कार्यक्रम सुगम संगीत में कुछ भजन सुनेगा 8:45 पर और चंद गजलें पेश की जाएंगी 12:30 पर। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में युगल गीत सुनेंगे 9:30 पर। कार्यक्रम सुहाना सफर का समय रहेगा 10:00। फौजी भाई अपना कार्यक्रम सैनिकों के लिए सुनेंगे 11:00। कुछ बातें कुछ गीत ये कार्यक्रम सुनेगा दिन में 12:05 पर। महिलाएं अपना कार्यक्रम महिला जगत सुने दिन में 1:05 पर। इसमें चर्चा के विषय रहेंगे बच्चों की झूठी प्रशंसा कितना सही, हाथों के साथ करें नाखूनों की देखभाल, बिजली की बचत, ग्वार पाठा के फायदे। फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे 2:30 पर और रात्रि 10:45 पर। युवा श्रोताओं के लिए युवाणी कार्यक्रम होगा 5:00। इसमें आज विषय रहेंगे राज्य की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाएं और आप सुनेंगे अपनी फरमाइश के फिल्मी नगमे आपकी पसंद के तहत और सुनेगा आज का इतिहास। आकाशवाणी की 90 पूर्ण होने के अवसर पर नरेश वर्मा की श्रोताओं से फोन आउट बातचीत सुनेंगे। कार्यक्रम सहराय की आप सुना करते हैं 6:05 पर। आज 7:00 सुनेंगे हैंडिगले लिड्स क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होने वाले ICC 2020 महिला क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के मध्य खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण। उर्दू सर्विस के कार्यक्रम आप सुनेंगे 2:00-3:00 से। जिले की चिट्ठी आप सुना करते हैं 6:40 पर। अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी सूरतगढ़ है। 6:55 होने को है। अब आप सुनेंगे समाचार।
1: EM आकाशवाणी।

0: है मुनीश शर्मा। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वायदा किया है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉन डेर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक भी करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स के साथ भी बैठक करेंगे। कल सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बैठकें की थी। यमुना नदी के जीर्णोद्धार के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह फैसला यमुना को स्वच्छ करने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर कुछ ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह का वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि देश में टेलीग्राम ऐप को क्यों फिलहाल बंद किया गया है। फीफा विश्व कप में कल फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। फ्रांस की ओर से किलियन मबापे ने 2 गोल किए और वे अब 58 गोल के साथ अपने देश के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। एक अन्य गोल ब्रैडली बारकोला ने दागा। सेनेगल के लिए एकमात्र गोल मबाय ने किया। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबले में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहे। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल और उत्तर प्रदेश में भी तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरब

0: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती हरा वास्ते। आज इसमें जानकारी का विषय है चारे के लिए लोबिया की बुआई।
1: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों आज आप बात करांगा हरे चारे की खेती लोबिया के बारे में मा, क्योंकि आपने किसान भाई लोग है बे पशुओं खातर हरे चारा खातर लोबिया की खेती करे, और लोबिया की खेती प्रोटीन से भरपूर एक फलीदार चारे की फसल है। किसान भाइयों सिंचित फसल अपा इन केस का दूसरी जगह चारे की फसल है बंग सागे भी अपा इन्हें बीजा जी मक्को है बाजरो है ज्वार है मक्चरी है नेपिर घास है या फिर सुडान घास है अंग सागा अपा इन मिलवा भी खेती भी करा, और आ गर्मी और सूखे ने सहन करने वाली एक फसल है। और लोबिया का चारा सुखान भाइयों साइलेज भी बहुत बढ़िया तरीका से बनाए जा सके, और इनकी खासियत आ भी है किसान भाइयों का ग्रीष्म ऋतु गमा इन बीजने पर 2-3 कटाइयां देश के, और इनको जो को हरे चारो है वो दुधारू पशुओं के लिए अच्छो मान्यो जावे। और जब तक उन्नत किस्म की बात करा अपा तो FOS 1 FOS 10 HFC 42 1 और EC 42 16 जो की किस्म है ये बहुत अच्छी किस्म है। इनके अलावा रशियन जायंट है RS 9 है इंग फिश है बहुत सी ऐसी किस्म है जिसका अपन लेके लोबिया की खेती कर सका। और जब तक खेत को चुनाव और तैयारी की बात है किसान भाइयों लोबिया की खेती खातर दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाए, खेत समतल और पानी भराव से मुक्त होना चाहिए, और खेत की तैयारी है बा हैरो द्वारा 2 जुताई अपन है करके तैयारी करनी चाहिए। और बुआई को जब तक समय है वो इनको बुआई मार्च से लेके मध्य जुलाई तक अपा कर सका, और सिंचित क्षेत्र का मां इन अपा मार्च अप्रैल में भी बो सका, और वर्षा ऋतु का मां मानसून प्रारंभ होते ही अपा इनकी बुआई जिकी अपन ने कर देनी चाहिए। यानी यह केस कहा कि साल का मां आ लोबिया की खेती है जिकी अपा 2 बार ले सका, अपना किसान भाई जिका लोग है वे पूरा साल भर चारों इनको ले सके। अब बात करें किसान भाई अपा बीज की और बुआई की, तो ग्रीष्म ऋतु में इनकी बुआई पोरा या ड्रिल मशीन से अपन करनी चाहिए, और वर्षा ऋतु में 10 किलोग्राम बीज जो को अपन लेके प्रति बीघा के हिसाब से अपन बीज देनी चाहिए, और इन कतारों कतारों की जिसकी दूरी है 32 सेंटीमीटर अपन रखनी है, और मिलुआ बोना पर अपन यानी कि दूसरी जिसकी चारा की किस्म है बन अगर अपन लेके सागे मिला के बीजांगा तो एक तिहाई दो जो को बीज अबूंगी अपने जरूरत पड़ेगी। और जब तक खाद और उर्वरक की बात है किसान भैया तो शुद्ध फसल का मापन है 10 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की गली सड़ी खाद है बा बुआई से पहले अपन दे देनी है, और इनके अलावा 20 किलोग्राम नत्रजन और 40 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपन है दे देनी चाहिए। बीज तो देखो तो आ नाइट्रोजन युक्त एक फसल है और इनमें खाद की ज्यादा जरूरत कौन पड़े नहीं, फिर भी अपन ने देनी जरूरी है। और जब तक खरपतवार नियंत्रण की बात है किसान भाइयों तो फसल ने खरपतवारों मुक्त रखना जरूरी है, इन वास्ते अपन ने 1-2 निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए, और जब बढ़वारगी अवस्था आवे तो अपने एक फिर इनमें निराई गुड़ाई जी की पा कर देवा। और सिंचाई किसान भाइयों इंग मापा ने गर्मी के टाइम का मां जब फसल बीज दी अपा तो करीब 15-20 दिन बाद का मापा ने मानसून आने तक सिंचाई करते रहना चाहिए, और वर्षा ऋतु का मां जरूर तोड़ना पर अपने 1-2 सिंचाई जी दे देनी चाहिए। तो आम बातों को ध्यान रखे किसान भाई लोग जगह लोबिया की खेती ले सके, लेकिन आप चवणा की खेती भी कह देवा, और आ एक पौष्टिक फसल है पौष्टिक खेती है पौष्टिक हरो चारो है वो, तो दुधारू पशुओं के लिए छोटा बछड़िया के लिए जो लोबिया को चारो है वो अच्छो है। और अब कटाई और उपजी जड़ तक बात है किसान भाइयों तो पहली कटाई को उपयुक्त समय बुआई 50-55 दिन बाद में अपन है जब पौधा पर फलियां बढ़नी शुरू हो जाए तो कर लेनी चाहिए, और गर्मी में टाइम का फसल में 2 कटाइयां अपन ले सका जी 30-35 दिन का अंतराल का मां 2 कटाई अपन ले लेवा, तो खरीफ की फसल का मां किसान भाइयों अपन 1 ही कटाई ले सका। और जड़ तक सावनी की बात है किसान भाइयों तो लोबिया की खेती से अपन 200 क्विंटल लोबिया को चारो ले सका, और गर्मी का मां लोबिया को जो चारो है वो 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपा ले सका। तो इतरिया किसान भाई लोग जगह पे पूरा ध्यान रखे अच्छी किस्म लेगे उन्नत किस्म लेगे और अच्छी तरह जमीन ने जुताई करगे और पानी धानी लगागे लोबिया की हरे चारे की जिसकी खेती अपा ले सके, और दुधारू पशुओं के लिए वो एक पौष्टिक चारो है और उन्नत खेती के तौर पर अपा इन्हें कर सका। तो आ बातों को ध्यान रखे लोबिया की खेती ले सका, पर अब हूं चालू राम राम शाह राम राम।
0: लोबिया की चारे के लिए लोबिया की बुआई। अभी किसान भाई इस विषय पर खेती हर वास्ते कार्यक्रम में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। लीजिए सुनिए लोक भजन, कलाकार हैं भंवर लाल सोलंकी।

अभी आप लोक भजन सुन रहे थे। कलाकार थे भंवरलाल सोलंकी। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मानस गान। आज इसमें सुनते हैं भाग संख्या 277। मुख्य स्वर रविंद्र सांठे का है।

सागर तट पर वानरों का विशाल समूह संपाति नामक गिद्ध से सीता के लंका की अशोक वाटिका में होने का पता पा चुका है। वृद्ध संपाति ने उन्हें यह भी बता दिया है कि जो सामने 400 कोस के विस्तार में फैले समुद्र को लांग सकेगा वही श्रीराम का कार्य संपन्न करने में सफल होगा। अपनी बात समाप्त कर जब गिद्ध चला गया तो वानरों को अपनी अक्षमता की प्रतीति हुई। ऋक्षराज जामवंत वृद्ध हो चुके हैं, उनके शरीर में पहले वाला बल नहीं है। अंगद को सागर पार चले जाने का आत्मविश्वास तो है परंतु लौट आने में संदेह है। किंतु वो तो वानर सेना के नायक हैं, उन्हें कैसे जाने दिया जा सकता है। जामवंत ने तब पवन पुत्र हनुमान के बल तथा सक्षमता का स्मरण दिलाया। बल में वे पवन के समान हैं और उसी प्रकार बुद्धिमान, विवेकशील तथा ज्ञान विज्ञान के भंडार। ऐसा कौन सा काम है जो वे नहीं कर सकते। ये सुनते ही हनुमान ने पर्वत सा आकार बना लिया, सोने जैसा वर्ण और शरीर का तेज उनकी सक्षमता का आभास देते हैं। उन्हें स्वयं अब इस बात का भान हुआ कि सामने लहराते सागर को वे खेल खेल में लांग सकते हैं।

मानस गान की भाग संख्या 277 अभी आपने सुनी, मुख्य स्वर रविंद्र साठे का था। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतकर से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुप्रभात। कार्यक्रम सुप्रभात सुनने वाले सभी श्रोताओं को आज नमस्कार देवेंद्र शर्मा की ओर से। श्रोताओं, संगीत से मिलती है मन को खुशियां। जी हां श्रोताओं, संगीत हमारे जीवन का एक ऐसा अटूट हिस्सा है जो सीधे हमारे दिल और दिमाग को छूता है। यह केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि मानसिक शांति, खुशी और सुकून का एक माध्यम है। श्रोताओं, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, चिंता और मानसिक थकावट एक आम समस्या बन चुकी है। ऐसे में संगीत एक थेरेपी की तरह काम करता है। जब हम अपने पसंद का कोई धीमा सा या शास्त्रीय संगीत सुनते हैं तो हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे फील गुड हार्मोन का स्राव होता है। यह हार्मोन मानसिक तनाव को तुरंत कम करके मन को गहराई से शांत करते हैं। संगीत केवल ध्यान भटकाने का साधन नहीं बल्कि एक एकाग्रता बढ़ाने में भी मदद करता है। पहले समय या कोई रचनात्मक काम करते समय हल्का वाद्य संगीत चलाया जाए तो मस्तिष्क के दोनों हिस्से सक्रिय हो जाते हैं। इससे सोचने की क्षमता और रचनात्मकता को नई उड़ान मिलती है। श्रोताओं, अकेलापन इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। ऐसे समय में संगीत एक सच्चे मित्र की भूमिका निभाता है। संगीत सुनने से अकेलेपन का एहसास कम होता है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। श्रोताओं, संगीत का समय के साथ एक जादू संबंध है। कोई पुराना गीत सुनते ही हम अचानक बीते दिनों की यादों में खो जाते हैं। वह किसी पुराने दोस्त, बचपन के किसी साथी की याद दिला देता है। संक्षेप में हम ये कहें, संगीत से मिलती है मन को शांति और जीने की नई राह। यह केवल कानों के लिए नहीं बल्कि सीधे आत्मा के लिए भोजन है। यदि आपके जीवन में कभी भी अशांति या उदासी महसूस हो तो कुछ पल के लिए आंखें बंद करें और संगीत की धुनों में खो जाएं। आपको अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस होगा।

श्रोताओ, जीवन में सफलता केवल धन प्रसिद्धि या ऊंचा पद हासिल करने तक सीमित नहीं है। वास्तव में सफलता एक निरंतर चलने वाली यात्रा है जिसमें व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ साथ एक बेहतर इंसान बनता है। सच्चा सफल व्यक्ति वह है जो आर्थिक रूप से समृद्ध होने के साथ साथ मानसिक रूप से शांत, संतुष्ट और खुशहाल हो। श्रोताओ, सफलता की यात्रा का पहला कदम है यह जानना कि आप जाना कहां चाहते हैं। जब तक आपके पास एक स्पष्ट और निश्चित

लक्ष्य नहीं होगा तब तक आपकी ऊर्जा और समय सही दिशा में नहीं लगेंगे। कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता, केवल सपने देखने से सफलता नहीं मिलती बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। लेकिन सिर्फ एक दिन की मेहनत काफी नहीं है। श्रोताओं, सफलता पाने के लिए निरंतर सबसे जरूरी है हर रोज अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाया गया एक छोटा कदम आपको एक दिन मंजिल तक पहुंचा देता है। श्रोताओं, जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करता सफलता कभी उसके पास नहीं आती। सफल लोग अपने दिन की योजना पहले से बनाते हैं। वे जरूरी और गैर जरूरी कामों में अंतर करना जानते हैं। श्रोताओं, सफलता का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, उसमें कई उतार चढ़ाव आते हैं। इतिहास गवाह है कि जितने भी महान लोग हुए हैं वे कई बार असफल हुए हैं। असफलता यह सिद्ध नहीं करती कि आप कमजोर हैं बल्कि यह बताती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। श्रोताओं, जब आप कुछ बड़ा करने निकलते हैं तो लोग आप पर संदेह करेंगे। ऐसे समय में आपका खुद पर विश्वास होना सबसे जरूरी है। सकारात्मक सोच आपको विपरीत परिस्थितियों में भी टूटने नहीं देती और आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। श्रोताओं, जीवन में सफलता पाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। यह आपकी आदतों, आपकी सोच और आपके फैसलों का परिणाम है। यदि आप आज से ही अपने समय का सम्मान करना, खुद का भरोसा रखना और ईमानदारी से मेहनत करना शुरू कर दें तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती।

श्रोताओं, देसी खान पान यानी पारंपरिक भारतीय भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि यह स्वाद, सेहत और हमारे समृद्ध संस्कृति का एक अनूठा संगम है। आधुनिकता की दौड़ में जहां आज फास्ट फूड का चलन बढ़ा है, वहीं हमारे पारंपरिक देसी खाने का महत्व और उसकी वैज्ञानिकता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। श्रोताओं, भारत विविधताओं का देश है और यही विविधता हमारे खान पान में भी झलकती है। हर राज्य और क्षेत्र का अपना एक विशेष देसी खाना है। श्रोताओं, देसी रसोई में इस्तेमाल होने वाले मसाले जैसे हल्दी, जीरा, हींग, अजवाइन, काली मिर्च और मेथी केवल स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं होते, इन सब में औषधीय गुण होते हैं। उदाहरण के लिए हल्दी एंटीसेप्टिक है, हींग और अजवाइन पाचन तंत्र को दुरुस्त रखते हैं और दालचीनी ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करती है। श्रोताओं, चीनी की जगह गुड़ या मिश्री का उपयोग हम करते हैं जो आयरन से भरपूर होते हैं। देसी खाने को बनाने का तरीका भी सेहत से जुड़ा है। मिट्टी के बर्तनों या लोहे की कढ़ाई में धीमी आंच पर पकाया गया भोजन अपने पोषक तत्वों को खोता नहीं है। लोहे के बर्तनों में खाना पकाने से भोजन में प्राकृतिक रूप से आयरन की मात्रा बढ़ जाती है जो एनीमिया जैसी बीमारियों से बचाती है। श्रोताओं, देसी खान पान हमारी जड़ों से जुड़ा हुआ है, यह न केवल हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है बल्कि हमें लंबी और स्वस्थ जिंदगी भी देता है। आज वैश्विक स्तर पर भी लोग ऑर्गेनिक और पारंपरिक भोजन की अहमियत को समझ रहे हैं, इसलिए हमें अपनी थाली में देसी खाने को गौरव के साथ

0: अभी आप कार्यक्रम सुपर भा सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 8 बजने को है, अब आप सुनेंगे समाचार।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। संघर्ष वाले इलाकों में नाविकों की सुरक्षा पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों को नीट पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के फर्जी दावों पर भरोसा न करने की अपील की। पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा भी की। श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल पहचान और तकनीक के जरिए लोगों के सशक्तिकरण तथा महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का मंत्र बहुत कारगर रहा है। श्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को भी मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की इस मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के दर्शन पर आधारित है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत कनाडा संबंधों में आई सकारात्मक तेजी का स्वागत किया है और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विजन 2035 के तहत आपसी संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के

0: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने राष्ट्रपति अल नाहयान को इस वर्ष भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केन्या और मिस्र के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के साथ बैठक में कहा कि दोनों देशों के संबंधों में व्यापार और निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के इस विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
2: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
1: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। 5.5 एकड़ में फैली इस परियोजना ने पहुंच को सुगम बनाया है और भारत के सबसे पूजनीय आध्यात्मिक केंद्रों में से एक को नया स्वरूप दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुंच प्रदान कर रहा है।
3: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
1: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये फैसला यमुना को स्वच्छ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक

0: की मांग की जा रही है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
1: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी अफवाहों, भ्रामक जानकारी या झूठे दावों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी करने का भी आदेश दिया है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्रों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे और कराईकल के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ आंधी की संभावना बन रही है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम फिलहाल 1-0 से आगे है। धर्मशाला में खेला गया पहला मैच भारत ने जीता था। और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों ने G7 शिखर सम्मेलन और नीट UG पुनर्परीक्षा के आयोजन से जुड़ी खबरों को सुर्खियों में जगह दी है। कुछ अखबारों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए तैयार की गई बड़ी योजना को भी मुख पृष्ठ पर सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। लोकसत्य की पहली खबर का शीर्षक है G7 का आगाज, PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की हुई मुलाकात। अखबार ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से उनके देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को भी प्रमुखता से छापा है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है मोदी ट्रंप की 16 माह बाद मुलाकात, वार्ता आज। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भेंट का चित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है G7 में मोदी ने उठाया भारतीय नागरिकों का मुद्दा। पत्र ने नीट UG की पुनः परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर स्थायी प्रतिबंध की खबर को भी अपना शीर्ष समाचार बनाया है। दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों ने इस खबर को विस्तार से पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है पेपर लीक ना हो इसलिए 22 तक टेलीग्राम बंद। पत्र ने इस वजह से आम उपयोगकर्ताओं को होने वाली परेशानी का भी विस्तार से विश्लेषण प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर द न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार आजादे मुआवेनी के लेख को प्रकाशित किया है। शीर्षक है क्या ये तेहरान की जीत है। इस लेख में कहा गया है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ज्यादातर अमरीकी सैन्य दखल जटिल संघर्ष में बदलती गई जिसे शायद ही कोई जीत कहे।
0: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किछाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला में दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Prime Minister Modi to meet US President

0: खतरात के तनाजुर में तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के शहर एवियन में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। दरियाए जमुना के आहिया के लिए तवील अरसे से जेर इल्तवा किशाऊ डैम प्रोजेक्ट पर अमल दरामद के बारे में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के माबेन इत्तेफाक राय हो गया है। इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी ने उम्मीदवारों से नीट के दोबारा इम्तिहान का पर्चा लीक होने के दावों से होशियार रहने को कहा है। भारतीय मौसमियात महकमे ने मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खित्ते और सिक्किम में तेज़ बारिश के इम्कान के मद्देनज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ का दूसरा मैच आज दोपहर लखनऊ में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सभी मुल्कों से जोर देकर कहा है कि आलमी बहरी गुजरगाहों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए और मल्लाहों को टकराव से वाबस्ता खतरात के तनाजुर में तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। फ्रांस के शहर एवियन में कल G7 की सरबराह कॉन्फ्रेंस में एक राबता इजलास से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मगरबी एशिया में लड़ाई से आलमी तजारत में रुकावट पड़ गई है और जानी नुकसान भी हुआ है। मगरबी एशिया में बहरी तजारत को लाहिक बढ़ते हुए खतरात और अदम इस्तेहकाम की इंसानी कीमत को उजागर करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मल्लाहों की सलामती को यकीनी बनाना हमारी जिम्मेदारी है जो आलमी बहरी तजारत के जरिए सभी मुल्कों को बाहम मुंसलिक करते हैं। वजारत खारजा ने बताया कि वज़ीर आज़म ने बैन अलाक़वामी साझेदारी कायम करने, ख़ास तौर पर बढ़ती हुई बाहम मुंसलिक दुनिया में एतमाद की अहमियत पर जोर दिया। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि बैन अलाक़वामी साझेदारी को अतिया देने वाले और लेने वाले फरीक से आगे बढ़कर यगानगत और मुसावियाना मिल्कियत की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। जनाब मोदी ने कहा कि बैन अलाक़वामी कानून के लिए एहतराम का फुकदान बैन अलाक़वामी यकजहती कायम करने में सबसे बड़ी रुकावट है और इस पर तरजीही बुनियाद पर तवज्जो दिए जाने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने जोर देकर कहा कि अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की खातिर बैन अलाक़वामी साझेदारी में मुज़ाकरात और सिफारतकारी को तरजीह दिए जाने की ज़रूरत है। फ्रांस का शहर एवियन इस वक्त आलमी सिफारतकारी का मरकज बना हुआ है। वहाँ G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस अहम मरहले में दाखिल हो रही है। भारत एक साझेदार मुल्क की हैसियत से इसमें शिरकत कर रहा है। सबकी निगाहें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान आज होने वाली दोतरफा मीटिंग पर लगी हुई हैं जिसका काफ़ी इंतज़ार किया जा रहा था। ये मुलाकात सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर हो रही है। फरवरी 2025 में Washington DC में दोनों लीडरों के दरमियान मुलाकात के बाद से ये पहली बिलमुशाफा मीटिंग है। उम्मीद है कि आज की मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमा मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा इश्तराक को मज़ीद वसअत देने के लिए वसीतर तबादले ख्याल करेंगे। साथ ही वो इलाकाई और बाहमी मफाद के आलमी उमूर पर भी बातचीत करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ये मीटिंग काफ़ी अहमियत की हामिल है क्योंकि भारत एक बड़ी आलमी ताकत के तौर पर उभरा है और आलमी बिरादरी भी पेशीदा आलमी चैलेंजों के हल के लिए अब और ज़्यादा भारत का रुख कर रही है। आलमी मामलात पर तबादले ख्याल को जहद देने में भारत के बढ़ते हुए रोल से उसका सिफारती रबते का दायरा बढ़ने और मुख्तलिफ फोरमों में आलमी रहनुमाओं के साथ सरगम रबतों की अक्कासी होती है। कल सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान एक रबता इजलास में वज़ीर आज़म ने बैन अलाक़वामी साझेदारी कायम करने और ख़ास तौर पर बढ़ती हुई बाहम मुंसलिक दुनिया में एतमाद की अहमियत पर जोर दिया। जनाब मोदी ने इस बात को भी उजागर किया कि भारत ने हमेशा इंसानियत मुकद्दम का रवैया इख्तियार किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत की ज़ेर कमान किए गए मुख्तलिफ इकदामात से इस बात की अक्कासी भी होती है जिनमें बैन अलाक़वामी शमसी इत्तेहाद कुदरती आफात से पैदा हालात से निमटने के लिए मजबूत बुनियादी ढांचे का मखलूत इत्तेहाद आलमी बायो ईंधन इत्तेहाद मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम मुहिम शामिल हैं। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि बैन अलाक़वामी साझेदारी के भारत के नज़रिए की बुनियाद वसुधे कुटुंबकम यानी दुनिया एक कुनबा है के दायमी फलसफे में पिन्हा है। फ्रांस के शहर एवियन से अंकित कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: अमरीकी सदर के साथ मुलाकात के अलावा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी G7 वर्किंग इजलास में भी शिरकत करेंगे जिसका मौजू है सभी के फ़ायदे के लिए मुतवाज़न जामे और पायदार माशी तरक्की को।

0: पूर्वी बंगाल, कोंकण, गोवा और उड़ीसा में आज गर्मी और हब्स का मौसम रह सकता है। मर्दों के क्रिकेट में आज लखनऊ में 3 मैचों की सीरीज के दूसरे ओडीआई में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। यह मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम इस सीरीज में 1-0 से आगे है और वो आज का मैच जीतकर इस सीरीज को अपने नाम करने की कोशिश करेगी। खवातीन क्रिकेट में आज लीड्स के हेडिंगले में आईसीसी खवातीन T20 आलमी कप में भारत और नेदरलैंड्स आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। हरमनप्रीत कौर की क्यादत में भारतीय टीम इतवार को बर्मिंगम में खेले गए पहले मैच में पाकिस्तान को 64 रन से शिकस्त देने के बाद अपनी जीत का सिलसिला जारी रखने की कोशिश करेगी। फुटबॉल में नॉर्वे ने फीफा आलमी कप में अमेरिका के बोस्टन स्टेडियम में ग्रुप एक के अपने पहले मैच में इराक पर 4-1 से जीत हासिल करके वापसी की है। अब नॉर्वे ग्रुप एक में सरफहरिस्त आ गया है। इससे पहले फ्रांस ने न्यू जर्सी स्टेडियम में फीफा आलमी कप 2026 के ग्रुप एक के पहले मैच में सेनेगाल को 3-1 से हराया था। इस मैच में काइलियन मैप्पे ने अपने करियर का 58वां गोल करके एक रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने आलमी कप में लियोनेल मेस्सी का भी अभी तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने फ्रांस के शहर एवियान में मुनाकिदा G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की शिरकत से मुतालिक खबर को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा इनकलाब और कई दीगर अखबारात ने नीट UG दोबारा इम्तहान से कबल टेलीग्राम ऐप पर पाबंदी की खबर को अपने सफ़े अव्वल पर शाये किया है। खांसी के सिरप सिर्फ लाइसेंस याफ्ता फार्मेसियों को इजाज़त। खांसी का सिर्फ फरोख्त की सिर्फ लाइसेंस याफ्ता फार्मेसियों को इजाज़त, इस खबर को बेशतर अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के इस बयान को रोजनामा प्रताप ने अपने पहले सफ़े पर नुमाया किया है कि आने वाली नस्ल के पास मुल्क में तब्दीली लाने के लिए दरकार मुनफरिद तवानाई और नया अज़्म मौजूद है। इसके अलावा आज के अखबारात की अहम बैन अल-अक़वामी खबरों की सुर्खियाँ इस तरह हैं। अमरीका का B-52 बम्बार तैयारा परवाज के फौरन बाद गिर कर तबाह, हादसे में 8 अफराद की मौत।
0: और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सभी मुल्कों से जोर देकर कहा है कि आलमी बहरी गुजरगाहों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए और मल्लाहों को टकराव से वाबस्ता खतरात के तनाजुर में तहफ्फुज फराहम किया जाए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के शहर एवियां में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। दरियाए जमुना के आहिया के लिए तवील अरसे से जेर इल्तवा किशाऊ डैम प्रोजेक्ट पर अमल दरामद के बारे में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के माबैन इत्तेफाक राय हो गया है। इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी ने उम्मीदवारों से नीट के दोबारा इम्तिहान का पर्चा लीक होने के दावों से होशियार रहने को कहा है। भारतीय मौसमियात महकमे ने मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खत्ते और सिक्किम में तेज़ बारिश के इम्कान के मद्देनज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये खबरनामा ख़त्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत में सुनते हैं कुछ भजन।

0: अभी आप सुगम संगीत कार्यक्रम में भजन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 9 बजने को है, अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। किशाऊ बांध परियोजना पर राजस्थान सहित 6 राज्यों के बीच सहमति बनी, इससे प्रदेश की कृषि और पेयजल की जरूरतें पूरी होंगी। राज्य सरकार ने बालोतरा में दुर्लभ खनिजों की खोज को स्वीकृति दी, प्रदेश में जल्द ही एनआईए कोर्ट खोलने पर भी मंजूरी। एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया और प्रदेश में कई इलाकों में बारिश से झुलसाने वाली गर्मी से राहत, किसानों ने खरीफ फसलों की बुवाई शुरू की। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। वर्षों से लंबित किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर राजस्थान सहित 6 राज्यों के बीच सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड

0: उत्तराखंड और हरियाणा शामिल हैं। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये सहमति बनी। इसके तहत हिमाचल प्रदेश के हिस्से का पानी अब राजस्थान और दिल्ली को दिया जाएगा। इसके बदले में ये दोनों राज्य हिमाचल प्रदेश की बिजली की लागत को साझा करेंगे। इस परियोजना से हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को भी उनके तय कोटे के अनुसार पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होगी, जिससे यमुना नदी में शुद्ध जल का प्रवाह बढ़ेगा। परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, जबकि शेष 10% खर्च सभी 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। इस संबंध में जल्द ही सभी राज्यों के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके बाद परियोजना को अनुमोदन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस फैसले को राजस्थान के लिए ऐतिहासिक बताया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश को अतिरिक्त पानी मिलेगा, जिससे भविष्य में कृषि और पेयजल की जरूरतें पूरी होंगी। प्रदेश में रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी दुर्लभ खनिजों की खोज को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही एनआईए से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत बनाई जाएगी। राज्य सरकार ने कल इस संबंध में कई फैसले किए। और ब्यौरा समाचार कक्ष से।
1: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कल जयपुर में हुई बैठक में 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनमें दुर्लभ खनिजों की खोज को बढ़ाने के उद्देश्य से बालोद्रा जिले के नवाताला और देवीगढ़ में करीब 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में खनिज ब्लॉक की नीलामी का फैसला शामिल है। इसके लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट को एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की मंजूरी दी गई है। राज्य की न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए एनआईए से जुड़े मामलों की जल्द सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना का निर्णय भी लिया गया है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश के 8 नए जिलों में नागरिक सुरक्षा कोर का गठन किया जाएगा। इनमें बालोतरा, डीडवाना कुचामन, फलौदी सलूम्बर, खैरतल तिजारा, डी कोटपुतली बहरोड और ब्यावर शामिल है। समाचार कक्ष से जयकिशन शर्मा।
0: कल एक अन्य बैठक में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने भी राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स RSMM को खनिजों के खनन में दुनिया की नवीनतम तकनीकी अपनाते हुए जीरो लॉस माइनिंग पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए। कल सचिवालय में RSMM की 76वीं वार्षिक साधारण सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मार्केटिंग के जरिए उपक्रम का कारोबार और मुनाफा बढ़ाने को कहा। केंद्र सरकार ने पराली प्रबंधन और इसके स्थायी समाधान के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में इस संबंध में एक उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालयी बैठक की अध्यक्षता की। श्री चौहान ने कहा कि पराली जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है और मिट्टी की उर्वरता तथा जन स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष के लिए फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत 544 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है, जिसमें से आधी राशि जारी की जा चुकी है। बैठक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के 14 जिलों की 70 तहसीलों में पराली सुरक्षा बल तैनात कर कड़ी निगरानी रखने पर भी जोर दिया गया। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की आज 486वीं जयंती है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने प्रताप जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में श्री बागड़े ने कहा कि महाराणा प्रताप ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए मुगलों को मेवाड़ से खदेड़ा था। मातृभूमि की रक्षा के लिए उनके संघर्ष को हमेशा याद रखा जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने आवास पर महाराणा प्रताप के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। पाली में इस अवसर पर देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगे। शहर में रैली भी निकाली जाएगी। कोटपुतली बहरोड में वाहन रैली निकाली जाएगी, जिसमें जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह शिरकत करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपये तक की मांग की जा रही है। एजेंसी

0: स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह का वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि देश में टेलीग्राम ऐप को बंद क्यों किया गया है। श्री सिंह ने मीडिया को बताया कि एनटीए परीक्षा प्रक्रिया को कदाचार मुक्त रखने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी प्रश्न पत्र हर प्रकार से सुरक्षित रखे गए हैं। इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज कोटा से छात्रों के लिए एक जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रहे हैं। अभियान के तहत राहुल गांधी शिक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं, रोजगार के अवसरों और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रदेश में शिशु मृत्यु दर को कम करने और बच्चों को मौसमी बीमारियों से बचाने के लिए स्टॉप डायरिया अभियान 2026 कल से शुरू हुआ। चिकित्सा मंत्री द्वारा शुरू किया गया यह विशेष अभियान 31 जुलाई तक प्रदेश भर में चलेगा। जयपुर प्रथम के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य डिहाइड्रेशन के कारण बच्चों में होने वाली जनहानि को रोकना है।
1: प्रोग्राम 31 जुलाई 2026 तक निरंतरता में चलेगा, जिसमें हमारे यहाँ से चिकित्सा विभाग में आशा सहयोगिनी घर घर जाके 5 साल तक के बच्चे हैं उन्हें ORS और जिंक उपलब्ध कराएंगे। और इसके साथ साथ में हमारे जो निरंतरता में सहयोगी विभाग रहेंगे, महिला बाल विकास रहेगा, PhD रहेगा, पंचायती राज रहेगा, इन सब का हम सहयोग लेके इसमें बच्चों की जो मृत्यु दर है, जो डिहाइड्रेशन के कारण जो मृत्यु हो रही थी बच्चों की, उसको कोशिश करके इसको कम करने की कोशिश करेंगे।
0: और अब मौसम। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कल भी कई स्थानों पर आंधी और बारिश का दौर बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अब कहीं भी हीट वेव की स्थिति नहीं है और लोगों को झुलसाने वाली गर्मी से राहत मिली है। विभाग के अनुसार शेखावाटी क्षेत्र के सीकर और चूरू में कल झमाझम बरसात हुई, वहीं श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में तेज आंधी से जनजीवन प्रभावित हुआ, लेकिन बाद में मौसम बारिश से सुहाना हो गया। अच्छी बारिश के बाद किसानों ने खरीफ फसलों की बुवाई शुरू कर दी है। बालोतरा में भी देर रात तूफानी आंधी के साथ बरसात हुई। बारिश बाड़मेर में मौसम ने अचानक करवट ली। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: जिले में देर रात अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। तेज अंधड़ आने से आसमान में धूल का गुब्बार छा गया। देखते ही देखते आसमान में काली घटाएं घिर आई और बरसात का दौर शुरू हो गया। इस दौरान जिला मुख्यालय के अलावा बाटाड़ू, शेव, बाईतू और नोखड़ा समेत कई इलाकों में मध्यम से तेज बारिश हुई। मानसून पूर्व की बरसात से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। इस बीच खरीफ की फसलों की बुवाई की तैयारी कर रहे किसानों में खुशी का माहौल है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
0: मौसम विभाग ने आज जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा और जोधपुर संभाग में आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। किशाऊ बांध परियोजना पर राजस्थान सहित 6 राज्यों के बीच सहमति बनी, इससे प्रदेश की कृषि और पेयजल की जरूरतें पूरी होंगी। राज्य सरकार ने बालोतरा में दुर्लभ खनिजों की खोज को स्वीकृति दी। प्रदेश में जल्द ही NIA कोर्ट खोलने पर भी मंजूरी। NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया। और प्रदेश में कई इलाकों में बारिश से झुलसाने वाली गर्मी से राहत, किसानों ने खरीफ फसलों की बुवाई शुरू की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मरुमंगल। कलाकार हैं तेज प्रकाश महरड़ा।

एलर्जी, अस्थमा, बांझपन और पेट संबंधी बीमारियों के आयुर्वेदिक इलाज हेतु मिले सेवानिवृत्त आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर लीलाधर शर्मा BAMS। आप आयुर्वेदिक चिकित्सा में 55 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। संपर्क करें कीर्ति मेडिकल क्लिनिक, मैन बाजार, बीज बायला, तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर। मोबाइल नंबर 94144 67

अभी आप लोक संगीत का कार्यक्रम मरु मंगल सुन रहे थे। कलाकार थे तेज प्रकाश मेहरड़ा। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सुनते हैं युगल गीत। कार्यक्रम का यह पहला नगमा फिल्म चरस से। आवाजें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और आनंद बख्शी की।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आसपास श्रोताओं, सुनता है इस फिल्म में मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर को। आनंद बख्शी की रचना को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
1: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: युगल गीत इस समय आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। आज आपके साथ में मैं देवेंद्र शर्मा। श्रोताओ, कार्यक्रम का अगला नगमा हमने लिया है फिल्म काला पत्थर से, आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। साहिर लुधियानवी की रचना को संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को सुनते हैं फिल्म सुहाग में। श्रोतो माफ़ कीजिए, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह को सुनते हैं फिल्म सुहाग में। गीत रचना आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

फिल्म संगीत में अभी आप युगल गीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुहाना सफर। कार्यक्रम में पहला नगमा लेते हैं हम फिल्म लोफर से, आवाज लता मंगेशकर की। आनंद बख्शी की रचना को संगीत से स्वारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: फसा। अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दूसरा आदमी। श्रोता, सुनते हैं इस फिल्म में किशोर कुमार और लता मंगेशकर को। मजरूह सुल्तानपुरी की रचना को संगीत से संवारा है राजेश रोशन ने।

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: श्रोताओं, सुनते हैं अनजान की रचना को कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया, आवाज किशोर कुमार की, और फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर।

0: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: भीगी पलकें। श्रोताओं, सुनते हैं इस फिल्म में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को। गीत लिखा है MG हसमत ने और धुन जुगल किशोर और तिलक राज की।

हम अपने श्रोताओं को बता दें, आज शाम 6:30 से रात्रि 10:45 तक हेडिंग्ले लीड्स क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होने वाले आईसीसी 2020 महिला क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के मध्य खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण डीआरएम चैनल, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर किया जाना है। श्रोताओं, आइए अब सुने फिल्म दोस्ती का ये नगमा, आवाज मोहम्मद रफी की। मजरूह सुल्तानपुरी की रचना को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

तुमसे अच्छा कौन है। आइए सुनते हैं इस फिल्म में मोहम्मद रफी को। हसरत जयपुरी की रचना को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

लता मंगेशकर को सुनते हैं फिल्म अनामिका में। मजरूह सुल्तानपुरी की रचना को संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

यीशुदास को सुनते हैं फिल्म सावन को आने दो, फिल्म का नगमा। इंडीवर की रचना को संगीत दिया है राजकमल ने।

कार्यक्रम सुहाना सफर इस समय आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। आज आपके साथ में मैं देवेंद्र शर्मा। श्रोताओं, कार्यक्रम के अगला नगमा लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज, फिल्म का नाम है हाथ की सफाई। गुलशन बावरा की रचना को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

श्रोताओ, कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं फिल्म शराबी का ये नगमा, किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाज़।

0: बनी, तेरे कदमों पे छलका दूंगी मैं सारे मेहखाने।
1: श्रोताओ, इसी के साथ कार्यक्रम समाप्त करने के लिए अपने साथी देवेंद्र

सुहाना सफर, ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों की सेवा में आज शोभा शर्मा का नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज करते हैं आराधना फिल्म के इस गाने के साथ। आवाज दी है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने, गीत आनंद बख्शी का और संगीत एस टी बर्मन का।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गैम्बलर फिल्म का गाना आपने सुना। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए पारस फिल्म से। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ें हैं, गीत इंदिवर का और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

लीजिए, कार्यक्रम में सुनते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों को। फिल्म का नाम है कभी कभी। गीत साहिर का और संगीत खैर।

सैनिक भाइयों, कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं मिलन फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मुकेश की ही आवाज़ों में। गीत आनंद बख्शी का है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सूरतगढ़ से, कार्यक्रम है सैनिकों के लिए। लीजिए, अब आपको सुनवाते हैं हमराज फिल्म का गीत महेंद्र कपूर की आवाज़ में। गीतकार साहिर हैं और संगीतकार रवि।

कार्यक्रम का अगला गाना हमने लिया है नूरी फिल्म से। लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज़ें हैं, शब्द रचना जानिशार की और तर्ज खयाम की।

चंबल की कसम। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज में। श्रोताओं माफ कीजिएगा, ये आवाज़ है लता मंगेशकर की।

कार्यक्रम में आइए सुनते हैं परिवार फिल्म का गाना लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में। गीतकार गुलशन बावरा है और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

लीजिए लता मंगेशकर की आवाज़ में रज़िया सुल्तान फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। गीत रचना जानिसार अख्तर की है और संगीत खय्याम का।

लीजिए, कार्यक्रम के आखिर में प्यासा सावन फिल्म का गाना आप सुनिए, लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ों में। गीत संतोष आनंद का और संगीत लक्ष्मीकांत पैरेलाल का।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

श्रोता सुन रहे हैं आगामी कार्यक्रमों की जानकारी। दोपहर 12:05 पर सुनिए कुछ बातें कुछ गीत। 12:30 पर सुगम संगीत आप सुनेंगे, इसमें चंद गजलें आपको सुनवाई जाएगी। 12:50 पर प्रस्तुत होगा ग्रामीण अंचल का लोकप्रिय कार्यक्रम खेत खलिहान। दोपहर 1 बजे जयपुर से प्रसारित होंगे प्रादेशिक समाचार।

1:05 पर महिला जगत कार्यक्रम होगा। इसमें चर्चा के विषय रहेंगे बच्चों की झूठी प्रशंसा कितनी सही, हाथों के साथ करें नाखूनों की देखभाल, बिजली की बचत, ग्वार पाठा के फायदे। महिला जगत पेश करेंगी सविता कुमारी। दोपहर 2 बजे मिड डे न्यूज आप सुना करते हैं। 2:15 पर हिंदी में समाचार होंगे। 3 बजे दिल्ली से उर्दू सर्विस का प्रसारण होगा। दो बजकर 30 मिनट पर फिल्म संगीत का आनंद आप ले पाएंगे हमारे सूरतगढ़ केंद्र से।

शाम 5 बजे युववाणी कार्यक्रम में सुनिए राज्य की प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद, आज का इतिहास तथा अन्य रोचक प्रस्तुतियां भी आप सुनेंगे। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर श्रोताओं श्री नरेंद्र सुथार, श्रीमती प्रेम देवी सिंवर एवं डॉक्टर राकेश शर्मा से नरेश शर्मा की विशेष बातचीत भी प्रसारित की जाएगी। कार्यक्रम के संयोजक होंगे नवीन सिसोदिया।

शाम 6 बजे कार्यक्रम विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। 6:05 पर सुनिए सराय की, 6:30 पर जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे, 6:40 पर जिले की चिट्ठी, 6:45 पर सुनिए राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, रात्रि 7 बजे हेंडिगले लीड्स क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित ICC T20 महिला विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के मध्य खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की विशेष कमेंट्री का प्रसारण किया जाएगा।

मैच का प्रसारण DRM मीडियम वेव और FM बैंड पर निर्बाध रूप से किया जाएगा। समाचारों के दौरान मैच का प्रसारण मीडियम वेव एवं FM बैंड पर रोका जाएगा। कार्यक्रम विवरण अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

कुछ बातें कुछ गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम स्मरण कर रहे हैं भारत के इतिहास के उस महान योद्धा को जिनका नाम साहस, स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति समर्पण का पर्याय है। जी हाँ, महाराणा प्रताप। मेवाड़ की धरती पर जन्मे महाराणा प्रताप ने हमें सिखाया कि सम्मान और स्वतंत्रता किसी भी मूल्य से बढ़कर होते हैं। उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी पराजय स्वीकार नहीं की। इसी भावना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं फिल्म जय चित्तौड़ के इस गीत के साथ।

केसरिया पगड़ी बनी रहे, केसरिया पगड़ी बनी रहे। भारत माँ के अभिमान तुम्हें आधी

अमर दुर्ग इस पगड़ी पर बलिदान हुए, इस ओर हमारे प्रताप ने, इस ओर हमारे प्रताप ने लोहू के सागर बहा दिए, लोहे के चने बहादुर।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं महाराणा प्रताप जयंती पर ये कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। उनके पिता महाराणा उदय सिंह और माता जयवंताबाई थीं। बचपन से ही प्रताप में वीरता, नेतृत्व और राष्ट्र प्रेम के गुण दिखाई देने लगे थे। जब मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा था, तब अनेक राजाओं ने समझौते का मार्ग अपनाया, लेकिन महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की स्वतंत्रता को सर्वोपरि माना। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि स्वाभिमान से बढ़कर कुछ भी नहीं। उनकी यही अडिग भावना आज भी देशवासियों को प्रेरणा देती है। श्रोताओं, महाराणा प्रताप का नाम आते ही चेतक की याद भी स्वतः आ जाती है। चेतक केवल उनका अश्व नहीं बल्कि उनका सच्चा साथी था। आइए सुनते हैं चेतक की वीरता को समर्पित ये अमर गीत।

0: महाराणा प्रताप और चेतक की मित्रता इतिहास के द्वितीय मानी जाती है। हल्दीघाटी के युद्ध में जब महाराणा प्रताप चारों ओर से घिर गए थे, तब चेतक ने अपने प्राणों की प्रवाह किए बिना उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। आज भी राजस्थान के लोकगीतों में चेतक की वीरता का वर्णन बड़े गर्व से किया जाता है। श्रोताओं, हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। यद्यपि यह युद्ध निर्णायक नहीं रहा, लेकिन महाराणा प्रताप का साहस और संघर्ष पूरे भारत के लिए प्रेरणा बन गया। उन्होंने जंगलों में रहकर कठिन जीवन व्यतीत किया। कभी कभी भोजन के लिए घास की रोटियां भी खानी पड़ी, लेकिन उन्होंने अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। इसी प्रसंग पर एक प्रसिद्ध लोक पंक्ति याद आती है, घास की रोटी खा ली पर शीश नहीं झुकाया। यही महाराणा प्रताप की पहचान थी।
1: About a warrior.

इतिहास केवल राजाओं और युद्धों का विवरण नहीं होता, बल्कि उन मूल्यों का स्मरण भी होता है जिनके लिए लोग अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। महाराणा प्रताप के संघर्ष में उनके सहयोगी भी कम महत्वपूर्ण नहीं थे। इनमें सबसे प्रमुख नाम है भामाशाह का। जब संघर्ष के कारण संसाधनों की कमी हो गई, तब भामाशाह ने अपनी संपूर्ण संपत्ति महाराणा प्रताप को समर्पित कर दी। इस सहयोग से मेवाड़ की सेना को नई शक्ति मिली और संघर्ष आगे बढ़ सका। भामाशाह और महाराणा प्रताप की मित्रता त्याग और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। महाराणा प्रताप ने केवल युद्ध ही नहीं लड़े, बल्कि जनता के मन में स्वतंत्रता की ज्योति भी प्रज्वलित की। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में मेवाड़ के अधिकांश क्षेत्रों को पुनः स्वतंत्र करा दिया था। उनकी दूरदृष्टि, प्रशासनिक क्षमता और जनकल्याण की भावना भी उतनी ही उल्लेखनीय थी जितनी उनकी वीरता। आज जब हम उनके जीवन को देखते हैं तो पाते हैं कि उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, सत्य और स्वाभिमान का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। महाराणा प्रताप केवल राजस्थान के नहीं, पूरे भारत के गौरव हैं। उनकी गाथा हमें साहस, आत्मसम्मान और राष्ट्रप्रेम की प्रेरणा देती है। आज की युवा पीढ़ी यदि उनके जीवन से संघर्ष, अनुशासन और दृढ़ निश्चय की सीख ग्रहण करे तो ये उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में एक बार फिर स्मरण करते हैं उस अमर वीर को जिसने मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया।

महाराणा प्रताप जयंती पर प्रस्तुत ये विशेष कार्यक्रम आज हमने लिया कुछ बातें कुछ गीत में। महाराणा प्रताप का जीवन हमें सदैव प्रेरित करता रहे यही कामना है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को शत शत नमन। जय हिंद, जय राजस्थान, जय मेवाड़।

शीश कटियां धड़ लड़ रहा आशान है राजस्थान री, सगड़ी दुनिया बोल रही या धरती है बलिदान री, अमर सिंह राणा प्रताप वीर दुर्गदास सरीख है वीरारी, आ धरती है भक्ति में तपियोड़ी मीरारी।

कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। 12:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए चंद गजलें कार्यक्रम सुगम संगीत के तहत। सुनते हैं ये गजल जसवंत सिंह की आवाज़ में।

0: इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। सुगम संगीत में आज आपने जसवंत सिंह, चंदन दास और मेहदी हसन को सुना। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। 12:50 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम खेत खलिहान। आज जानकारी का विषय है बूंद बूंद सिंचाई पद्धति व इसके लाभ।
1: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों, अपने क्षेत्र में किसान भाइयों जका भांत भांत की फसल लेवे, अर वे जिकी भी फसल अपने भाई लोग जका निर क्षेत्र में लेवे, तो वे पानी के आधार पर ही जकी लेवे। पानी अपने सीमित मात्रा में है, और सीमित मात्रा में उपलब्ध होने के सागे सागे जे आप सिंचाई जल को आप कुशल उपयोग करके उत्पादन ए सिंचित क्षेत्र भी बढ़ाया जा सके। सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र जगह के अंतर्गत अपने श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले को क्षेत्र आवे, तो जल संपदा को धनी है किसान भाई। और इन क्षेत्र में गंगा नहर है, बाखड़ा नहर है, इंदिरा गांधी नहर है, आशू सिंचाई जकी हो है। पर सिंचाई के जल के कुशल उपयोग के सागे सागे अपनी सरकार है जकी भी जल बचत के अंतर्गत कई कार्यक्रम जका चला रखे है, तो जके शू के किसान भाई ने पूरा लाभ है जो उठाना चाहिए। जहाँ डिग्गी निर्माण में अपने अनुदान मिले, नालिया ने पक्को करण को, पाइपलाइन लगाने को, कई तरह का अनुदान है जगह अपनी सरकार है जकी देवे। इनके अलावा नई फुवारा विधि है या बूंद बूंद सिंचाई पद्धति पर भी अनुदान है जो अपने उपलब्ध सरकार है जो करावे। तो बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली में जल को उपयोग मंद गति से बूंद बूंद करके फसल के जड़ क्षेत्र में करो जे। इनके लिए जके उपकरण को उपयोग आप करा तो बिंगा तीन प्रमुख भाग हुआ है। पहलो भाग एक पंपिंग यूनिट है जो लगभग 2.5 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर को जल दाब उत्पन्न करे। इनको दूसरो भाग एक पाइपलाइन है जकी पीवीसी को बनेडो होवे, और तीसरो भाग ड्रिप लाइन ई पर लागड़ा ड्रिपर होवे। किसान भाइयों, जके शुके के पानी पौधे के आसे पासे टपकतो रहे और जल ने कुएं या डिग्गी शू पंप द्वारा उठा के पाइपलाइन के माध्यम से ड्रिपर तक एक निश्चित दाब पर पहुंचायो जाए, जके शू जल बूंद बूंद करके पौधे के कने टपकतो रहे और भूमि द्वारा अवशोषित कर लियो जाए। किसान भाइयों, ई विधि शू पौधे ने जल की पूर्ति लगातार जारी रहे, जके शू के पौधे की बढ़वार और विकास अच्छो है। ई शू पैदावार के सागे सागे उत्पादन की गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी हुए। ई विधि में जल को उपयोग अत्यंत मितवे ढंग शू करो जाए। ई विधि शू सिंचाई करने पर जल वहन द्वारा रिसाव और भूमि स्तर पर वाष्पन द्वारा जल हानि जकी कोनी हुए। ई विधि की सिंचाई दक्षता अत्यधिक है और आ विधि अपने विशेष तौर शुष्क क्षेत्रों के लिए अत्यंत उपयोगी है। ई विधि में जल के सागे सागे उर्वरक है, जल में घुलनशील आवश्यक रसायन व्यापार सीधा पौधे के जड़ भाग तक पहुंचाया जा सके। ई प्रकार से उर्वरक है रसायन दे गया आप जल के सागे सागे उर्वरक है रसायन को व्यापिक ई प्रकार उर्वरक है रसायन दे गए जल के सागे सागे उर्वरक है रसायन की काफी बचत है जकी करी जा सके। रसायन को सीमित उपयोग करने से संभावित पर्यावरण प्रदूषण ने व्यापा कम कर सका। आ विधि विशेष तौर बागा सब्जियां एर चौड़ी कतार वाली नकदी फसलां जिया के कपास गन्नो अंगे लिए बहुत ही उपयोगी है। किसान भाइयों, बात करा पा बूंद बूंद सिंचाई का फायदा की। ई विधि शू जल की बचत होए। ई प्रणाली शू जल की बचत मुख्यतः कम क्षेत्र में सिंचाई करने शू सतह शू कम वाष्पन होने शू सतह शू कम बहाव शू एर जड़ क्षेत्र शू बार कम रिसाव के कारण हुए। आ जल बचत फसल मृदा

वातावरण की परिस्थितियां पर भी निर्भर करे। इन सीमित जल से ज्यादा क्षेत्र में सिंचाई भी करी जा सके। किसान भाइयों, बूंद बूंद सिंचाई में सिंचाइयों का अंतराल बहुत ही कम रखे जाए, जबकि शू पौधों संपूर्ण वृद्धि काल में जल तनाव में कदई को नहीं आवे। ड्रिप सिंचाई में जल पूर्ति इसी दर्शु करी जाए कि जबकि मृदा जल की उच्च मैट्रिक प्रसरण क्षमता द्वारा फसल की वाष्पीकरण मांग ने भी संतुष्ट कर सके। किसान भाइयों, ड्रिप प्रणाली से सूक्ष्म जलवायु ठंडी रहने के कारण गर्मी की ऋतु में गर्मी से और सर्दी में नमी रहने के कारण पाले गए कुप्रभाव से फसलों ने भी बचाया जा सके। तापमान में कमी और आर्द्रता में बढ़ोतरी से फसल के उत्पादन और गुणवत्ता में भी सुधार हुए। किसान भाइयों, इन प्रणाली में फसलों की सिंचाई के सागे सागे उर्वरक अन्य रसायन जिया के खरपतवार नाशी कीटनाशी फफूंद नाशी अंग जे जरूरत हो तो आप आवश्यक मात्रा में देश का जके के अंगो दक्षता पूर्वक उपयोग और जल की बचत दोनों हो जाए। बूंद बूंद सिंचाई में जल पौधा ने आवश्यकता अनुसार पौधे के मूल क्षेत्र के आसपास ही दियो जाए, जबकि पौधे के बीच में खरपतवार की भी कमी आ जाए। खारे जल वाले क्षेत्र में जठे पारंपरिक सिंचाई विधियां कम कारगर साबित हुई है, किसान भाइयों बठे आ बूंद बूंद सिंचाई पद्धति ज्यादा आवृत्ति और नमी लगातार बनाए रखने के गुणा के कारण लवणा ने जड़ा से दूर रखे, जबकि पौधे के जड़ भाव में लवणा को कम सांद्रण बनाए रखे, जबकि पौधा की बढ़वार जकी खारे जल से प्रभावित कोनी हुए और अच्छी पैदावार भी ली जा सके। किसान भाइयों, इन प्रणाली में ऊंची नीची भूमि में भी बिना समतलीकरण के आपा पानी है जको लगा सका। रेतीली भूमिया में जठे अंत स्पंदन द्वारा जल को अत्यधिक हास हुए, बठे आ प्रणाली जल बचाने में काफी सहायक सिद्ध हुई है। जके क्षेत्र में सिंचाई के बाद भूमि पर पपड़ी जम जाए या अंकुरण में कठिनाई हुए तो बठा सिंचाई की पद्धति बहुत ही उपयुक्त हुई है। इन प्रणाली में डोलियां बनाने की भी जरूरत को नहीं हुए और अतिरिक्त क्षेत्र में बुआई करी जा सके और श्रम की भी बचत हुए। किसान भाइयों, अब बात करा पा इंगे रख रखाव की या में कोई ध्यान देने वाली बात है जबकि वे अपने ध्यान में जकी रखनी चाहिए। बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली में इन प्रणाली में ड्रिपर बंद हो जाए। ड्रिपर का मुख्यतः मिट्टी लवणा या शवाल की वजह से बंद हुए अतः बलुई छनक या जालीदार छनक के माध्यम से अपने पानी ले जाना चाहिए। नहरी क्षेत्र में जैविक पदार्थ भी पानी के सागे आ जाए तो दोनों छनक लगाना चाहिए अपने। जे पानी को स्रोत कुआं है तो जालीदार छनक ही पर्याप्त हुए। किसान भाई जठे लवणीय जल है तो बठे ड्रिपर लवण जमा हो जाने के कारण बंद हो जाए तो बने तनु हाइड्रोक्लोरिक फॉस्फोरिक या नाइट्रिक अमल से साफ है जका करना चाहिए। लेटरल ने कई बार चूहा कुत्ता या जानवर जका भी ने नुकसान पहुंचावे तो इसे पाने जको बचाव जकी करनी चाहिए। किसान भाइयों, इन प्रणाली की शुरुआत में की लागत ज्यादा हुए और इनमें तकनीकी ज्ञान की बहुत ही जरूरत हुए तो इन प्रणाली को नापा तकनीकी ज्ञान ले गए। किसान भाइयों, इन तरह से आपा बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है बिंग आपा लाभ है जका ले सका। जितना भी आपा बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से जो अपना क्षेत्र बढ़ावा या जिकी भी फसल में आपा लाभ लेना चाहवा तो भी फसल में विशेष तौर अपने ज्यादा ही उत्पादन मिलेगो और जितो भी आपा उत्पादन लेवांगे बिंगी गुणवत्ता भी चोखी होगी। तो इन खातर जितना भी भाई लोग अपने बूंद बूंद सिंचाई पद्धति जे अपनावे तो बहुत ही अच्छी बात है। और जितनी आपा बूंद बूंद सिंचाई पद्धति अपनाऊंगा पानी आपा सीमित मात्रा में होने के कारण अच्छो बूंद बूंद है जो उपयोग करांगा तो लाभ है जगह अपने अच्छा मिलेगा। तो इन तरीके से अपने जितो भी आपा पानी को बूंद बूंद उपयोग करांगा खेती में तो बितो आपा खेती से ज्यादा लाभ है उत्पादन है वो ले सकांगा। पर अपने वो भी ध्यान में रखना है कि जितनी भी अपनी फसल है तो बांगो कम से कम पानी वाली जकी फसल भी अपने बीजनी चाहिए और इसे क्षेत्र भी अपने धीरे धीरे थोड़ो जो सिंचित बढ़ाना चाहिए। जितनी भी आप बूंद बूंद सिंचाई पद्धति अपनावा तो जितो आप क्षेत्र बढ़ावा तो बितो अपने बीजा भाव जो ज्यादा होगो और अपनो उत्पादन जो ज्यादा होगो और सागे अपने लागत है बाजिया खाद है या उर्वरक है या जगह अपने रासायनिक छिड़काव करा तो वह बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से कि में कमी भी आ जाएगी तो वो भी अपने एक या केस का बचत है और पीसो टको जो अपने बच्चे को। तो इन तरीके से अपने जितनी भी बूंद बूंद सिंचाई पद्धतियों से आप फसल लेवा बस अच्छो लाभ है जो लेना चाहिए। पर हूँ अब खेत का नहीं चालू। राम राम शाह राम राम।

0: आयुर्वेदिक इलाज हेतु मिले सेवानिवृत्त आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर लीलाधर शर्मा BAMS। आप आयुर्वेदिक चिकित्सा में 55 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। संपर्क करें कीर्ति मेडिकल क्लिनिक, मैन बाजार, बीज बायला, तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर। मोबाइल नंबर 94144-67186।
1: अभी किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम खेत खलिहान, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति व इसके लाभ। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1 बजने वाला है। थोड़ी ही देर में समाचार होंगे। समाचार जयपुर अजमेर केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। ये 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली बढ़ोतरी है। वित्त वर्ष 2020-21 में ये आंकड़ा लगभग 84,000 करोड़ रुपए था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस शाखा ने जैसलमेर से सेना और बीएसएफ की गोपनीय जानकारियां लीक करने के आरोप में एक संदिग्ध जासूस को गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान नाचना क्षेत्र के हिंगोला गांव निवासी मुश्ताक अली के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी पिछले 2 वर्षों से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंटों के संपर्क में था। वो पैसों के लालच में सोशल मीडिया के जरिए सेना और बीएसएफ की गतिविधियों के फोटो और वीडियो सीमा पार भेज रहा था। बहरहाल गिरफ्तार आरोपी को आज सुबह जयपुर लाया गया है, जहां अब विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों द्वारा उससे गहन पूछताछ की जा रही है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद होर्मूज जलडमरू मध्य इस सप्ताह के अंत तक खुल जाएगा। इससे ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इसराइल की सैन्य कार्रवाई के बाद दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया था और कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर लगभग $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। प्रदेश में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न जिलों में शोभा यात्राओं और रैलियों के आयोजन हो रहे हैं। महाराणा प्रताप की जयंती और हल्दी घाटी के युद्ध की 450वीं वर्षगांठ पर उदयपुर में आयोजित समारोह किया जा रहा है। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत कर रहे हैं। समारोह को संबोधित करते हुए श्री भागवत ने तत्कालीन इतिहासकारों के नैरेटिव का खंडन करते हुए तथ्यों के साथ बताया कि प्रताप के पराक्रम और युद्ध नीति के सामने मुगल सेना को भारी नुकसान उठाकर पीछे हटने और छिपने पर मजबूर होना पड़ा था। प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण में मकान सूचीकरण और मकान गणना का काम निर्धारित समय में पूरा कर लिया गया है। जनगणना निदेशालय के अनुसार प्रदेश में 1 से 15 मई तक स्वगणना और 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर आंकड़े जुटाए गए। ये व्यापक अभियान राज्य के 41 जिलों और 10 नगर निगम क्षेत्रों में 1,34,000 से अधिक ब्लॉकों में चलाया गया। इसमें 1,40,000 प्रगणकों, 23,000 पर्यवेक्षकों और अन्य कर्मचारियों ने भाग लिया। इस चरण में मोबाइल ऐप के जरिए

0: मकानों मूलभूत सुविधाओं और संपत्तियों की जानकारी जुटाई गई जिसे सीधे केंद्र को भेजा गया है। आज विश्व मगरमच्छ दिवस है। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण में मगरमच्छों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया जा रहा है। पाली जिले के जवाई और देसूरी क्षेत्र के बांधों में 350 से अधिक मगरमच्छ मौजूद हैं जो क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ पर्यावरण का संतुलन भी बनाए रख रहे हैं। जिला वन अधिकारी प्रशांत कस्तूरी ने बताया कि मगरमच्छों को जीवित रहने के लिए स्वच्छ पानी, पर्याप्त आहार और शांत किनारों की आवश्यकता होती है। जवाई बांध में इनकी लगातार बढ़ती संख्या इस बात का सकारात्मक संकेत है कि यहां का वेटलैंड पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह स्वस्थ और इनके अनुकूल है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। यह मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से होगा। भारत ने अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 64 रनों से हराया था। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत प्रदेश में आगामी 28 जून रविवार को बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। अभियान की तैयारियों को लेकर कल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की स्टेट टास्क फोर्स की बैठक संपन्न हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 1:05 हुए हैं। अब बहने सुने अपना कार्यक्रम महिला जगत सविता कुमारी के साथ।

आदमी मुसाफिर है, सफ़र ही कहानी है, मंजिल की जुस्तजू एक ख्वाब बेमानी है। उड़ना है परिंदे को हवाओं के सीने पर, उड़ना है परिंदे को हवाओं के सीने पर, पंखों पे भरोसा है मंजिल आसमानी है, पंखों पे भरोसा है मंजिल आसमानी है। कार्यक्रम सुनने वाली सभी बहनों को सविता कुमारी का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, हमारा शरीर कितने अंगों से मिलकर बना है, हर अंग का अपना अपना महत्व है। सभी अंग मिलकर हमारे शरीर को पूर्ण करते हैं। इसी पूर्णता को बनाए रखने के लिए हमें अपने अंगों का और शरीर का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बहनों, अगर बात करें हमारे हाथों की, तो हमारे हाथ दिन भर हमारे सभी काम संवारते हैं। किसी चीज़ की पकड़ हो, खींचना हो, धकेलना हो, खाना हो, हमारा दैनिक कार्य कुछ भी हो, जितना हाथों के साथ हम काम करते हैं और किसी के साथ ऐसा नहीं करते, और बिना हाथों के कोई काम पूर्ण हो ही नहीं सकता। हमें हमारे हाथों का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। हाथ दिन भर तरल पदार्थों, ठंडे गर्म पानी, साबुन की रगड़ और इन सभी को झेलते हैं, जिससे उनकी त्वचा खुरदरी और रुखी हो जाती है, तो ऐसे में उनकी देखभाल विशेष रूप से करनी चाहिए। हाथों को दिन भर के काम के बाद रात को सोने से पहले अच्छे से साबुन से साफ करके धोकर और सुखाकर कोई अच्छी सी क्रीम, नारियल तेल, जैतून का तेल या फिर बादाम का तेल लगाना चाहिए। अगर चाहें तो उसमें विटामिन ई का कैप्सूल डालकर भी वह तेल लगाया जा सकता है। इससे त्वचा में नमी बनी रहती है और रात भर में पोषण भी मिल जाता है। मैंने इसके अलावा अगर हाथों पर कहीं चोट लगी है या घाव है तो उसका पूरा उपचार करवाना चाहिए। दिन भर उस घाव पर पानी पड़ने से घाव हरा ही रह जाता है और उसमें संक्रमण हो जाता है, तो इससे बचाव के लिए हाथों की देखभाल अति आवश्यक है। बहनों, हाथों के साथ साथ नाखूनों की भी विशेष देखभाल ज़रूरी है। हाथों के नाखून हमारे स्वास्थ्य का आईना कहे जाते हैं। अगर शरीर में कहीं कोई समस्या है तो नाखून उसे उजागर कर देते हैं, तो ऐसे में हमें हमारे नाखून भी साफ़ सुथरे और स्वस्थ रखने चाहिए।

बहनों, हम गीत से पहले बात कर रहे थे हाथों और नाखूनों की देखभाल के बारे में। हाथों के साथ साथ नाखूनों को स्वस्थ और सुंदर रखने के लिए हमें नाखूनों को हमेशा साफ और सूखा रखना चाहिए ताकि वहाँ बैक्टीरिया पनप ना सके। नाखूनों को नियमित अंतराल पर काटकर साफ करना चाहिए। नाखून काटते समय ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ आसपास की त्वचा ना कट जाए, वरना वहाँ संक्रमण हो सकता है या फिर घाव भी हो सकता है। बहनों, जिस तरह हाथों को धोकर उन पर क्रीम या तेल लगाना चाहिए, वैसे ही नाखूनों को नर्म और मुलायम बनाए रखने के लिए उन पर भी क्रीम या फिर तेल की मसाज करनी चाहिए। इससे नाखून के आसपास की त्वचा, जिसे क्यूटिकल्स कहते हैं, साफ सुथरी रहती है। अक्सर पानी के संपर्क में लगातार आने से नाखून कमज़ोर होकर टूटने लगते हैं, तो ऐसे में बर्तन धोते समय या घर की सफाई करते समय दस्ताने पहनने चाहिए। इससे नाखूनों के साथ साथ हाथ की त्वचा का भी बचाव होता है। बहनों, किसी किसी की आदत होती है नाखून चबाने की, इससे भी नाखून खराब होते हैं, तो हमें ऐसी आदत से बचाव करना चाहिए। साथ ही हमारी आदत होती है डिब्बों को खोलने के लिए, हम नाखूनों को औजार की तरह इस्तेमाल करते हैं, या कुछ खुरचना हो तो भी नाखूनों का प्रयोग किया जाता है। इससे कभी कभी गहरी चोट भी लग सकती है, नाखून टूट सकते हैं, तो हमें ऐसी गलती से बचना चाहिए। बहनों, नाखूनों को नियमित सफाई के साथ सही समय पर काटना बेहद ज़रूरी है। नाखूनों में फंसी हुई गंदगी हमारे भोजन के साथ हमारे मुँह में जाती है, जो कि कई बीमारियों को न्योता देने जैसा है। तो नाखून हमेशा साफ रखने चाहिए, और अगर हम इन पर नेल पेंट लगाते हैं तो उन्हें लगातार कई दिनों तक नाखून पर नहीं रखना चाहिए, इससे भी नाखून खराब होते हैं। बहनों, बस थोड़ी सी देखभाल से हमारे नाखून और हाथ स्वस्थ रह सकते हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य भी सही बना रह सकता है। तो आइए इसी के साथ सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

बहनों, सकारात्मक व्यवहार और प्रशंसा हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हमें प्रशंसा मिलती है तो हमारा हौसला दुगना हो जाता है और काम करने की काबिलियत भी बढ़ जाती है। और यही बात बच्चों पर भी लागू होती है। अक्सर घरों में बच्चों को जिम्मेदारी देते वक्त यही कहा जाता है कि अरे ये तो तुम कर ही लोगे, अरे वाह तुमने तो ये कर दिखाया, अरे वाह तुम तो अभी बहुत छोटे हो पर तुमने ये कर दिया। बस इन्हीं बातों से बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है और वे जिम्मेदार बनते हैं। बहनों, पर कभी कभी ये प्रशंसा हद से ज़्यादा हो जाए या झूठी प्रशंसा में बदल जाए तो यह बच्चे के विकास में बाधा बन सकती है। पहले समाज में बच्चों की इतनी प्रशंसा नहीं थी जितनी आज के समय में है। आज प्रशंसा ने भी दिखावे का स्थान बना लिया है। माता पिता दूसरों के सामने अपने बच्चों को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए उनकी बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करते हैं, जिससे बच्चों में दंभ भर जाता है कि हम तो श्रेष्ठ हैं, हमारे माता पिता तो हमेशा हमारी तारीफ ही करते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चों का आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और जिम्मेदारी सब कमज़ोर पड़ने लगते हैं। इससे बच्चों का सामाजिक और मानसिक विकास बाधित होता है। बहनों, बच्चों को जिस तरह क्या सही है क्या गलत है ये सिखाया जाता है, उसी तरह उन्हें सकारात्मक प्रशंसा और नकारात्मक प्रशंसा का ज्ञान भी देना बेहद ज़रूरी है। जीवन में हमेशा सब कुछ अच्छा हो यह आवश्यक नहीं, और अगर बच्चा कहीं गलत है तो उसे सलाह देना भी अति आवश्यक है। पर गलत या झूठी प्रशंसा हमेशा गलत ही होती है। कभी कभी यह ताने या फिर उलाहने का रूप भी ले लेती है, जिससे बच्चों के मन में हीन भावना आ जाती है और वो कटे कटे से रहने लगते हैं। इसलिए जब भी बच्चों की प्रशंसा करें तो उचित शब्दों में करें, उनकी उपलब्धि की नहीं बल्कि उनके प्रयास की प्रशंसा करें, और बढ़ा चढ़ाकर या गलत प्रशंसा तो भूलकर भी ना करें। आइए सुनते हैं इसी के साथ ये प्यारा सा गीत।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी?
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम,
2: और ये
3: मेरी गुड़िया के नाम।
4: पर दादी
0: हाँ?
4: आपके नाम?
5: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो
4: क्या?
6: RBI कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: जानते हैं कुवैत जैसे देश की GDP से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
9: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
8: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
9: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
8: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: बहनों गर्मी के मौसम में बिजली की खपत बढ़ जाती है, पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, बढ़ती गर्मी से पंखे, कूलर, एसी, इन सभी की खपत बढ़ जाती है जिससे हमारा बिजली का बिल ज़्यादा आने लगता है और हम ये सोचने लगते हैं कि ये बिल कम कैसे किया जाए। तो बहनों बिजली का बिल कम करने के कुछ उपाय हैं जो बिजली की बचत कहलाते हैं। बिजली की बचत करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है कि हम अपने दैनिक उपयोग के उपकरणों के इस्तेमाल में छोटे छोटे बदलाव करें, जैसे कि परंपरागत बल्ब की जगह आधुनिक LED लाइट्स का उपयोग करें जो लगभग 75 से 80% बिजली की कम खपत करती हैं, और कमरे से बाहर जाते समय लाइट्स, पंखे, AC सब बंद कर देने चाहिए। AC को हमेशा 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में चलाना चाहिए, इससे कंप्रेशर पर कम भार पड़ता है और बिजली की बचत होती है। AC के फिल्टर को हर 15 दिन में साफ करना चाहिए ताकि हवा का दबाव ना रहे और मशीन बिजली की खपत कम करे। बहनों फ्रिज के माध्यम से भी बिजली की बचत की जा सकती है। फ्रिज को दीवार से कम 6 इंच की दूरी पर रखना चाहिए ताकि उसे हवा लगती रहे। गर्म खाना सीधे फ्रिज में नहीं रखना चाहिए और फ्रिज का दरवाज़ा ज़्यादा देर तक खुला नहीं रखना चाहिए, इससे भी बिजली की बचत की जा सकती है। बिजली की बचत के और भी उपाय जानेंगे, आइए पहले सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

बहुत बिजली बचाते हैं। आज घरों में सब अपने अपने पर्सनल रूम में रहते हैं। पहले लोग दोपहर को और रात को खाना खाने के बाद एक ही जगह टीवी लगाकर एक साथ बैठते थे, तो एक ही जगह पर बिजली की खपत होती थी। आज हर कोई अपने अलग अलग कमरों में टीवी, एसी, पंखे, लाइट्स और कूलर चलाते हैं, जिससे बिजली की खपत बहुत ज़्यादा होती है। तो इस बार पहले की तरह एक साथ पूरा परिवार एक जगह समय बिताए तो बिजली भी बचेगी और सब एक साथ समय भी बिता पाएंगे। बस ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम बिजली की बचत कर सकते हैं, जो कि हमारे प्राकृतिक संसाधनों की बचत के लिए बेहद ज़रूरी है। और ऊर्जा की बचत हमें आने वाली पीढ़ी के लिए भी करनी है। बस इन्हीं बातों का ध्यान रखकर बचत करें और निश्चिंत रहें। तो आइए सुनते हैं इसी के साथ प्यारा सा गीत।

मैनू, हम गीत से पहले बात कर रहे थे बिजली की बचत के बारे में। हम उपकरण उपयोग में ना होने पर बटन बंद कर देते हैं, पर टीवी, कंप्यूटर या मोबाइल चार्जर जो उपयोग में ना हो तो इन्हें सॉकेट से निकाल देना चाहिए। बंद होने के बावजूद स्टैंड बाय मोड में उपकरण बिजली की खपत करते हैं। इसके अलावा दिन के समय खिड़की और पर्दे खोलकर प्राकृतिक रोशनी का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि दिन में लाइट ना जगानी पड़े। सूर्य की ऊर्जा भी घर में आए जिससे बैक्टीरिया और कीटाणु नष्ट हो जाएं और साथ ही बिजली की बचत भी हो जाए। इस तरह एक पंथ दो काज हो सकते हैं। बहनों, आजकल बिजली के उपकरण स्टार रेटिंग देखकर खरीदे जाते हैं। इसे स्मार्ट शॉपिंग कहा जाता है। जब भी कोई नया उपकरण जैसे कि पंखा, कूलर, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जो भी खरीदें, 5 स्टार रेटिंग देखकर ही खरीदें क्योंकि ये लंबे समय में

बहनों, हमारी प्रकृति ने हमें बहुत से उपहार दिए हैं, जिनमें सबसे उपयोगी और सदियों से उपयोग किए जाने वाला उपहार है औषधीय पौधे। आज औषधीय पौधों में हम बात करेंगे गवार पाठा की। गवार पाठा स्वास्थ्य, त्वचा और बालों के लिए एक अत्यंत गुणकारी औषधि है। यह पाचन सुधारने, कब्ज दूर करने और त्वचा को नमी देने के साथ साथ घाव और जलन ठीक करने में भी बहुत प्रभावी है। बहनों, गवार पाठा, जैसे इसे एलोवेरा भी कहा जाता है, यह एक बेहतरीन मॉइस्चराइज़र है जो त्वचा को पूरी तरह से हाइड्रेट करता है, यानी कि नमी प्रदान करता है। गवार पाठे के एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण सनबर्न, मामूली कटने या छिलने पर ठंडक पहुंचाते हैं और जल्दी से चोट को ठीक भी करते हैं। बहनों, गवार पाठा चेहरे के लिए वरदान है। अगर मुहांसों की समस्या है या आंखों के नीचे काले घेरे हैं तो एलोवेरा का जल रामबाण है। इसके नियमित इस्तेमाल से यह समस्या दूर होती है। गवार पाठा का जूस हमारे पेट के लिए भी अमृत है। इसका जूस कब्ज दूर करता है और पेट से संबंधित किसी भी समस्या को भी दूर करता है और यह पेट को आसानी से साफ भी कर देता है। साथ ही यह गैस, एसिडिटी और पेट की सूजन को कम करके पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, जो कि बहुत ही लाभदायक होता है। बहनों, गवार पाठा हमारे बालों के लिए भी बहुत लाभकारी है। इसका जल सिर की त्वचा साफ करके रूसी को दूर करता है, बालों का झड़ना कम करता है और उन्हें रेशमी और मुलायम बनाता है। इसके अलावा एलोवेरा जूस का नियमित सेवन करने से पेट की चर्बी कम होती है और वजन नियंत्रित होता है। कुछ शोध तो ये भी बताते हैं कि यह शरीर में ब्लड शुगर के स्तर को भी कम करता है, तो इतने गुणों वाले गवार पाठा का उपयोग हमें अवश्य करना चाहिए। और इसी के साथ सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 326.79।

0: News. नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा, भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा, 2020-21 की तुलना में 110% की वृद्धि। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया, 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला लखनऊ में जारी। अब समाचार विस्तार से। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया है। अपने बयान में नेताओं ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत किया और इसे क्षेत्रीय तनाव कम करने तथा ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। G7 नेताओं ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित नौवहन गतिविधियों के महत्व का भी उल्लेख किया। एक अन्य घोषणा में नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का संकल्प लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा बताया। सहयोगी देशों ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल का समर्थन किया है। नेताओं ने ज्ञान कौशल को बढ़ाने और तस्करी को रोकने के लिए G7+ पोर्ट्स नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखा। G7 देश के नेताओं ने विकासशील देशों पर बढ़ते कर्ज के बोझ से निपटने की कोशिशें तेज करने का संकल्प लिया है। इसमें वे कमजोर मध्यम आय वाले देश भी शामिल हैं, जो अभी कोरोना महामारी के दौरान G20 के कर्ज राहत ढांचे के लिए योग्य नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमेरिका के वॉशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। हमारे संवाददाता अंकित कुमार एवियन से G7 सम्मेलन के घटनाक्रमों पर ताज़ा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। जी अंकित, दोनों नेताओं के बीच किन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है?
1: जी लवली, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है ये कई मायनों में अहम है। हालांकि दोनों नेता कल ग्रुप फोटो और वर्किंग सेशन के समय मिले थे, लेकिन अब सबकी निगाहें इस द्विपक्षीय मुलाकात पर टिकी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान पश्चिम एशिया संकट को लेकर बात हो सकती है। देखिए, भारत हमेशा से शांति और बातचीत का पैरोकार रहा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुद्दे पर व्यापक बातचीत हो सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की प्रगति पर भी बात हो सकती है। भारत ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात कर सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया का संकट हो या अन्य कोई भी भू राजनीतिक तनाव हो, ऊर्जा क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में इस मुद्दे पर प्रमुखता से बात हो सकती है। इन मुद्दों के अलावा श्री मोदी और श्री ट्रंप भारत अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार के सभी पहलुओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। लवली,
0: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। श्री मोदी सम्मेलन के दौरान सभी के लाभ के लिए संतुलित समावेशी और मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर सत्र में भी हिस्सा लेंगे। श्री मोदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, तेज और प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर आयोजित एक विशेष सत्र में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी CEOs के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक दोपहर तक चलने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। पेरिस में विवाटेक शिखर

0: सम्मेलन का उद्घाटन कुछ ही समय में होने जा रहा है। दुनिया भर के अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नवाचार क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस प्रतिष्ठित आयोजन में जुटना शुरू हो चुका है। कल शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी, जो भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत करेगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ोन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्रवाइयों तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। वित्त वर्ष 2020-21 में इसमें 110% की वृद्धि हुई है, जब ये आंकड़ा 84,000 करोड़ रुपए से अधिक था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और नवाचार, तकनीक तथा स्वदेशी निर्माण की सहायता से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। MyGov की एक पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कैसे भारत ने जल, थल और आकाश में उन्नत स्वदेशी तकनीकों के बल पर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 12 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी के विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने यह उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था।
2: भारत आज विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में लगातार अपनी जगह बनाए हुए है। ये उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का मुकाबला कई बड़े और विकसित देशों से है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की कृषि निर्यात में निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में हमारा कृषि निर्यात $53 अरब तक पहुँच गया और इसकी वृद्धि दर भी काफी अच्छी रही है।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बंजर भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाने की सरकार की कोशिशें न सिर्फ प्रकृति की सेवा है बल्कि मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प भी है। नई दिल्ली में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए वैश्विक दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है।
3: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कॉप 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
1: मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्य भर में उग्रवाद विरोधी अभियान तेज कर दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग अभियानों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और 26 अवैध बंकर नष्ट किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की पहचान प्रतिबंधित पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उसके राजनीतिक विंग रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट के सक्रिय सदस्यों के रूप में हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी

0: एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
1: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
0: इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है।
2: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की हिजबुल्ला और सैन्य कार्रवाइयों की निंदा की है। फ्रांस में जारी G7 सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष बहुत लंबे समय से जारी है और इसमें कई लोगों की जान गई है। उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से सैन्य कार्रवाइयों के संचालन में अधिक जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ईरान समझौता ज्ञापन की घोषणा के बाद से इसराइल ने लेबनान में युद्ध विराम का कई बार उल्लंघन किया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि हमले जारी रहे तो कड़ा जवाब दिया जा सकता है। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि इसराइली बलों ने 48 घंटे में 84 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन ईरान और अमेरिका के बीच जारी व्यापक कूटनीतिक प्रक्रिया के लिए खतरा बन सकता है। वहीं इस बीच हिजबुल्ला के अधिकारियों का कहना है कि समझौते के बाद से संगठन ने कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल को भी युद्ध विराम की शर्तों का पालन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इसराइली नेतृत्व ने संकेत दिया है कि सुरक्षा खतरों को देखते हुए सैन्य अभियान जारी रहेंगे और उत्तरी सीमा पर सेना हाई अलर्ट पर बनी रहेगी। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: इस बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 1 विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 से हराया है। अर्जेंटीना ने भी आज सुबह अल्जीरिया को 3-0 से पराजित किया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। विभाग ने आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पहुंचा। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।

0: नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्ज पर। 2:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।
2: और गाओ ना दीदी।

0: से मैं निकल पड़ूंगा।
1: शाबाश, मीठी मीठी बातों से बच
2: रहा। इस गाने में जो बाल कलाकार हैं डेजी ईरानी, आज उनका जन्मदिवस है।

कैदी नंबर 911। इस फिल्म का गाना आपने सुना, लता की आवाज़ थी। गीत हसरत जयपुरी का और संगीत था दत्ताराम वाटकर का। कठपुतली फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत हसरत जयपुरी का और संगीत शंकर जयकिशन का।

0: ये गाना था कठपुतली फिल्म का।
1: ये गाना था कठपुतली फिल्म का, लता मंगेशकर की आवाज़ में। लीजिए कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। आज शाम 5 बजे युववाणी में फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद के साथ साथ हम आपको सुनवाएंगे। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर श्रोता साथियों नरेंद्र सुथार, प्रेम देवी सींवर और डॉक्टर राकेश शर्मा से नरेश वर्मा की बातचीत। संयोजक होंगे नवीन सिसोदिया। अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गाना।

ये गाना था काली टोपी लाल रुमाल का। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं चोरी चोरी फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मनाडी की आवाज़ों में, गीत शैलेंद्र का और संगीत शंकर जयकिशन का।

लीजिए अब सुनते हैं आन फिल्म का गाना लता मंगेशकर और सखियों की आवाज़ों में, शब्द रचना शकील बदायूनी की और तर्ज नौशाद की।

आन फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 3 बजे हैं और अब समय है उर्दू सर्विस का।

3:30 पर आप सुनेंगे गीतों भरी कहानी। तहरीर होगी जनाब ओम शर्मा की। 4 बजे आप फिल्मी मौसीकी का लुत्फ ले सकेंगे जिसमें आप नगमे सुनेंगे।

4:50 पर आप खबरें सुनेंगे और 5 बजे हमारी दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर होंगी।

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।

फैसल हबीब से खबरें सुनिए। G7 रहनुमाओं ने कई ऐलामियों को मंजूरी दी है, जिनमें आलमी इस्तेहकाम, सलामती से मुतालिक ताउन और मुल्कों के माबैन मुनज्जम जरायम से निपटने की कोशिशों पर तवज्जो मरकूज की गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के शहर एवियान में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस से अलग अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। जनाब मोदी फ्रांस के अपने दौरे के हिस्से के तौर पर आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की खुद मुख्तारी के साथ कोई समझौता नहीं है। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए फैसलाकुन कार्रवाइयों के तौर पर जिक्र किया। भारत के दिफाई साजो सामान की तैयारी में माली साल 2025-26 के दौरान 1.78 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, जो 2020-21 से अब तक 110% इजाफा है। और हिफाजती दस्तों ने मणिपुर में कानून नाफिज करने और शोरिश पसंदी से निमटने की कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार और 26 गैर कानूनी बुनकर्स को मुनहदिम किया गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस के शहर एवियान में जारी G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में एक अहम वर्किंग सेशन में शिरकत कर रहे हैं, जिसका मौजू सभी के मफाद के लिए मतवाजिन, सबकी शमूलियत वाली और पायदार इकतसादी तरक्की को फ़रोग देना। इस आला सतही सेशन में G7 के रुकन ममालिक, शराकत दार ममालिक और बैनुल अक्वामी मालियाती फंड्स नीज OECD के कलेदी नुमाइंदगान शिरकत कर रहे हैं। इस दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ दो तरफा मुलाकात इंतहाई अहमियत की हामिल है, जो आज शाम होने वाली है। ये मीटिंग इस लिहाज से इंतहाई स्ट्रेटजिक अहमियत की हामिल है कि भारत एक बड़ी आलमी ताकत के तौर पर उभरा है और बैनुल अक्वामी बरादरी पेचीदा आलमी चैलेंजों को के हल के लिए नई दिल्ली की तरफ देख रही है। आलमी मुद्दों पर तबादले ख्याल को तश्कील देने में भारत का बढ़ता हुआ रोल, इसकी सफारती पहुंच और बड़े फोरमों में आलमी रहनुमाओं के साथ शराकतदारी की अक्कासी करता है। अमरीकी सदर के साथ मीटिंग के अलावा वज़ीर आज़म मोदी एक वर्किंग लंच में भी शिरकत करेंगे, जिसका मौजू है मसनूई ज़हानत के महफूज, तेज़ रफ्तार और मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाना। इस मीटिंग में G7 के रुकन ममालिक, शराकत दार ममालिक और AI कंपनियों के CEOs डिजिटल इख्तरा के मुस्तकबिल पर तबादले ख्याल करने के लिए एकजा होंगे। वज़ीर आज़म मोदी यूरोपीय कमीशन के सदर उर्सुला वॉन डेर लियन के साथ भी दो तरफा मीटिंग करेंगे। वज़ीर आज़म जर्मनी की चांसलर फ्रेडरिच मर्ज की भी दो तरफा मीटिंग करेंगे। इसी दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस के अपने दौरे के हिस्से के तौर पर आज शाम पेरिस पहुँच जाएंगे। भारतीय बिरादरी के अरकान उनकी आमद के मुंतजर हैं और उनके इस्तकबाल की तैयारियां जारी हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर कहा है कि पिछली दहाई के दौरान भारत के दिफाई सलाहियतों में खातिरख्वाह इजाफा हुआ है। ये इजाफा खुद कफालत के नज़रिए की रहनुमाई में हुआ है, जिसे इख्तरा टेक्नोलॉजी और साजो सामान को मुल्क ही में तैयार किए जाने से तकवीत मिली है। जनाब मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर MyGOV के जरिए पैगामात भेजते हुए वजाहत की है कि मुल्क ने किस तरह फ़जा, ज़मीन और समंदर में अपने दफाई सलाहियतों को मजबूत किया है, मुल्क में ही तैयार की गई टेक्नोलॉजीज़ को जदीद तरीन बनाया है और ख़ुद इन्हसारी और कौमी सलामती के लिए एक मजबूत तर बुनियाद की तामीर की है। उन्होंने कहा कि इससे भारत की तरक्की की एक झलक मिलती है, जो उसने पिछले 12 साल में दिफा के शोबे में हासिल की है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ हरगिज़ बर्दाश्त न करने की पॉलिसी से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी फैसलाकुन कार्रवाइयों तक से भारत ने एक वाजह पैगाम भेजा है कि उसकी खुद मुख्तारी के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि भारत में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूर अंदेश क़यादत में इसकी कौमी सलामती के ताने बाने में एक तारीखी तब्दीली हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि दिफा के शोबे में आत्मनिर्भरता के लिए मुल्क के अज़्म से मुल्क की सलाहियतों को इस्तेहकाम मिला है। मुसलह फौजें जदीद बनी हैं और ज़मीन, समंदर, फ़जा, साइबर और खला के शोबों की तैयारियों में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। वज़ीर दिफा ने खास तौर पर कहा कि पिछले 12 साल के सफ़र से एक मजबूत तर, महफूज तर, खुद कफील
اور مزید

0: मेरी पसंद प्रोग्राम सुनने वाले सभी सामईन की खिदमत में मोहम्मद अली कमाल का पुरखलूस आदा।
1: आपका एहसान मेरी जान, वही वही
2: वही वही वही वही।

0: अभी आपने फिल्म जबक का ये नगमा सुना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। और आप समाप्त कीजिए, यहूदी फिल्म से नगमा, आवाज़ है लता मंगेशकर की।
1: प्यार किसी के हो ही गया।

लता मंगेशकर और साथियों को आपने सुना फिल्म यहूदी में। और लीजिए आप सुनिए बेवकूफ फिल्म से ये नगमा। आवाजें हैं आशा भोसले और मन्ना डे की।

अभी तो चंद साल है अल्लाह का फजल, तू जो हाँ कह दे तो बनवा दे कई ताजमहल। अभी तो चंद साल है अल्लाह का फजल, तू जो हाँ कह दे तो बनवा दे कई ताजमहल।

आशा भोसले और मन्ना डे की आवाज़ों में आपने ये नगमा सुना। और अब पेश है उमर कैद फिल्म से नगमा, आवाज़ें हैं मुकेश और आशा भोसले की।

इस नगमे के साथ ही मेरी पसंद का ये प्रोग्राम अब ख़त्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। गीतों भरी कहानी लीजिए आज जिम्मेदारी उन्वान के तहत ये कहानी सुनिए और इसमें आप नगमे सुनेंगे। तहरीर है जनाब ओम शर्मा की।

राकेश एक ऊंचे घराने का लड़का था। मन्नतों से मांगा, नाजो नेम से पला। कभी किसी तरह की कमी ने जिंदगी में उसका सामना नहीं किया था। रजनी को उसने पहली बार अपने कॉलेज में देखा था और तब से ही उसे ऐसा लगने लगा था जैसे रजनी से ज्यादा खूबसूरत, रजनी से ज्यादा मासूम, रजनी से ज्यादा समझदार कोई और नहीं है। उसका जी चाहता था वो रजनी को बुलाए, उसके पास बैठे, उससे बातें करे, उसके साथ मिलकर बाहों में बाहें डालकर घूमे, नाचे, गाए और सिवाय रजनी के दुनिया की हर चीज को भूल जाए। वो हर शय में रजनी को देखने लगा, आसमान में, सितारों में, चांद में, सूरज में, कलियों में, फूलों में। जिस तरफ नजर उठाता था रजनी ही रजनी दिखाई देती थी।

0: एक दिन अचानक उसकी नजरों ने उस रजनी को देखा जिसे वो हर शय में देखना चाहता था। रजनी अपने घुटनों पर अपना सर रखे कॉलेज के लॉन में बैठी थी। कुछ किताबें उसके सामने पड़ी थीं। राकेश रजनी को बहुत देर तक खड़े देखता रहा। उसका जी चाहता था कि वो रजनी से पूछे वो इस तरह उदास क्यों बैठी है, लेकिन कैसे पूछे? उसने तो आज तक किसी भी लड़की से बात नहीं की थी। लड़की से बात कैसे की जाती है वो नहीं जानता था। उसका कोई दोस्त भी नहीं था जिससे वो पूछ लेता कि लड़की से बात कैसे की जाती है। उसने कभी रजनी को किसी लड़की से बात करते हुए भी नहीं देखा था जिसकी मदद से वो रजनी की उदासी का सबब पूछ सके। कोई और चारा नहीं सिवाय इसके कि वो खुद उससे बात करे। वो आगे बढ़ा, आहिस्ता आहिस्ता रजनी के पास पहुंचा, कुछ देर रुका, फिर धड़कते हुए दिल से बोला,
1: रजनी जी,
2: जी
1: बुरा ना लगे तो इस उदासी का सबब पूछ सकता हूं आपसे?
2: जी नहीं, कुछ भी तो नहीं।
1: कहते हैं बता देने से दुख आधा रह जाता है। बताइए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं।
2: जी
1: बताइए ना, मुझ पर यकीन कीजिए, मैं कोई बुरा लड़का नहीं हूं। आपको बहुत अच्छा समझता हूं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं। आपकी कोई मदद कर सकूं तो शायद मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
2: मैं मुसीबत में फंस गई हूं राकेश जी।
1: राकेश जी, आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ?
2: मैं इसी कॉलेज में पढ़ती हूँ, आपका नाम कैसे ना जानती होंगी?
1: इस कॉलेज में तो बहुत सी लड़कियां पढ़ती हैं, लेकिन मुझे तो किसी का नाम नहीं मालूम। हाँ, आपका मालूम है। जानती हैं क्यों? क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। क्या मैं ये समझूं कि मैं भी आपको बुरा नहीं लगता?
2: आप एक अच्छे आदमी हैं, बुरे क्यों लगेंगे?
1: चलिए तो फिर बिला झिझक बता दीजिए कि आप अचानक किस मुसीबत में फंस गई हैं।
2: मेरे माता पिता नहीं हैं।
1: ओह,
2: सिर्फ बड़े भैया हैं। मुझे अच्छी तालीम दिलाने के लिए वो कड़ी मेहनत करते हैं। आज मैं उनसे कॉलेज की फीस जमा कराने के लिए पैसे लाई थी, बस मैं किसी ने मेरा पर्स खाली कर दिया। सोच रही हूँ भैया को जाकर किस मुंह से कहूँ कि मुझे और पैसे दे, और ना कहूँ तो फीस के पैसे कहाँ से लाऊं?
1: रजनी जी, किसी ने ठीक कहा है कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। इतनी सी बात के लिए आप इस कदर परेशान हैं?
2: मेरे लिए ये इतनी सी बात नहीं है राकेश जी, मेरे लिए तो ये पहाड़ से भी बड़ी है।
1: लेकिन अब नहीं है, आपकी फीस कल जमा हो जाएगी। चलिए चलिए, अब उठिए, उदासी को यहीं छोड़ दीजिए, अब आइए कॉफी पियेंगे।
2: चलिए।
0: रजनी और राकेश को एक दूसरे को पहचानने में देर नहीं लगी, एक दूसरे के करीब आने में देर नहीं लगी, एक दूसरे का हो जाने में देर नहीं लगी, और बिल्कुल देर नहीं लगी राकेश का वो सपना पूरा होने में कि वो रजनी के साथ बैठे, उससे बातें करे, हंसे, उसका हाथ थाम कर उछले, कूदे, नाचे, गाए।

0: रजनी के बड़े भैया सूरज रजनी को बहुत प्यार करते थे। उसकी ख्वाहिश थी रजनी खूब पढ़े और एक दिन किसी बहुत अच्छे घर के बहुत अच्छे लड़के का हाथ थाम कर अपने घर जाए। एक दिन अचानक सूरज ने रजनी और राकेश को एक दूसरे का हाथ थामे एक पार्क में घूमते देख लिया। उसने राकेश का नाम पता मालूम किया और फिर एक दिन वो राकेश के पिता से मिला और दोनों की शादी की बात की। लेकिन जैसा कि इस समाज का रिवाज है, राकेश के पिता ने दोनों के बीच गरीबी और अमीरी की दीवार खड़ी कर दी, जिसे फलांगना सूरज के बस में नहीं था। सर झुकाए हुए वो घर लौटा। रजनी ने अपने भैया को कभी इस तरह उदास घर आते हुए नहीं देखा था। वो परेशान हो उठी।
1: क्या बात है भैया, आप इतने परेशान क्यों हैं? किसी से कोई झगड़ा हुआ है क्या? किसी ने कोई उल्टी सीधी बात कह दी है क्या?
2: नहीं।
1: आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं चाय बना कर लाती हूँ। क्या हुआ है भैया, आप बोलते क्यों नहीं?
2: रजनी।
1: हाँ।
2: मैंने अपनी बेटी की तरह पाला है तुझे
1: भैया,
2: तेरी कोई खुशी अधूरी ना रह जाए, मैंने हमेशा यही कोशिश की है, पर आज मैं मजबूर हूं। आज अपने हाथों से तेरी खुशियों का गला घोटना होगा मुझे।
1: भैया, ऐसा कौन सा कसूर हो गया है मुझसे?
2: कसूर तुझसे सिर्फ इतना हुआ है बहन कि तू एक गरीब माँ बाप के घर पैदा हुई और एक गरीब भाई की बहन है।
1: पिताजी को तो मैंने देखा नहीं भैया,

0: पर आप जैसा भाई भगवान हर बहन को दे। आपने मुझे कभी महसूस भी नहीं होने दिया कि मैं गरीब बाप की बेटी और एक गरीब भाई की बहन हूँ। आपने तो भैया मुझे दुनिया की हर खुशी दी है। कई जन्म लेकर भी मैं आपके एहसान नहीं उतार सकती भैया।
1: पर आज उन सब पर पानी फिर जाने का वक्त आ गया है। रज्जू, आज जो बात मैं तुझसे कहने जा रहा हूं उसे सुनकर तू शायद मुझसे नफरत करने लगे।
0: भैया आखिर बताइए तो सही कि हुआ क्या है।
1: तुझे तुझे राकेश को भूलना होगा रज्जू।
0: राकेश? राकेश को भूलना होगा? लेकिन लेकिन आप राकेश को कैसे जानते हैं?
1: मैं राकेश को अच्छी तरह जान गया हूं रज्जू, अच्छी तरह जान गया हूं। वो एक अमीर आदमी का बेटा जरूर है मगर बुजदिल है, कायर है, मेरी बहन का हाथ थामने के काबिल नहीं।
0: भैया मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, ये आप क्या कह रहे हैं? आप राकेश को कैसे जानते हैं? वो कायर है, ये आपको कैसे इल्म हुआ? वो आपकी बहन का हाथ थामने के काबिल नहीं है, ये आपने कैसे जाना?
1: मैं आज उसके घर गया था, उसके पिता के पास, राकेश के साथ तेरी शादी की बात करने।
0: फिर
1: लेकिन उसके पिता ने एक गरीब आदमी की बहन को अपनी बहू बनाना मंजूर नहीं किया। उस लड़की को अपनी बहू बनाने से इनकार कर दिया जिसके भाई के पास कोठी नहीं है, कार नहीं है, घर में ऐशो आराम के सामान नहीं है। तुम ये जानना चाहती हो ना कि मुझे सब कुछ कैसे मालूम हुआ? मैं तुम्हारा भाई हूं रज्जो, तुम्हारी जिंदगी के हर पहलू पर नजर रखना मेरा फर्ज है।
0: भैया
1: बस इसी फर्ज की अदायगी ने मुझे सब कुछ दिखा दिया। रज्जो, जमाना बहुत खराब है और हम बहुत गरीब, इसीलिए मैंने सोचा जल्द से जल्द तुम्हारी शादी राकेश के साथ कर दी जाए।
0: भैया,
1: इसीलिए मैं उसके घर उसके पिता से मिलने भी गया।
0: राकेश
1: वो भी वहीं था रज्जू, चुपचाप खड़ा अपने पिता के लेक्चर सुनता रहा। मैंने जब उसकी तरफ देखा तो उसने अपना सर झुका लिया। वो कुछ कहता तो शायद मुझे हौसला मिल जाता, पर उसकी खामोशी ने मेरी हिम्मत तोड़ दी। मैं चुपचाप वहां से चला आया। रज्जू, रज्जू मेरी बहन, इससे पहले के बाद कोई और मोड़ ले ले तू उसे भूल जा। मैं जानता हूं तेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, पर मुश्किलों पर काबू पाना ही बहादुरी की पहचान है, और तू तो बहादुर है, इस मुश्किल पर आसानी से काबू पा लेगी। भगवान तुझे शक्ति दे, जिस शक्ति के सहारे तू अपनी एक अच्छी जिंदगी गुजारे।

0: और फिर बहुत जोरदार जलजला आया, शहर तबाह हो गया, बड़ी बड़ी इमारतें मिसमार हो गईं, हजारों लोग मलबे के ढेर के नीचे दबके रह गए, अनगिनत बड़े बड़े पत्थरों के नीचे दबे बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे, पर बचाए कौन? बचाने वाला कोई नहीं था। कहीं कहीं कोई जो बच गया था इतना खौफजदा था कि किसी को बचाने के लिए किसी भी टूटी फूटी इमारत के पास जाना अपनी जान को जोखिम में डालने के बराबर समझता था। राकेश, उसके पिता, उसका सारा खानदान अपनी ऊंची हवेली के भारी पत्थरों के नीचे दबे हुए बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे। दूसरी तरफ रजनी और उसका भाई सूरज बाल बाल बच गए थे। दोनों मिलकर राकेश की हवेली की तरफ भागे और अपनी जान को हथेली पर रखकर मलबे को हटाया, राकेश को निकाला, उसके पिता को निकाला, उसके कुनबे के बाकी अफराद को निकाला और अस्पताल ले गए। राकेश की दोनों टांगें बेकार हो गई थीं। उसके पिता के दोनों हाथ इस बुरी तरह कुचल गए थे कि काटने पड़े। रजनी और सूरज को उनसे मिलने की इजाजत मिल गई।
1: आओ सूरज बेटे, ये तुम्हारी बहन रजनी है ना?
2: जी हाँ, यही रजनी है मेरी बहन, जिसने आपकी हवेली की गिरती दीवारों की परवाह न करते हुए अपनी जान हथेली पर रखकर आपकी, राकेश की और आपके खानदान के दूसरे सभी अफराद की जान बचाई।
1: हाँ, मैं तुम लोगों के एहसान का बदला कभी नहीं चुका सकता। रजनी बेटी, अगर तुम मुझे बाहर न निकालती तो मैं उन पत्थरों में

0: ही दबकर मर जाता।
1: पिताजी,
0: तुमने राकेश की जान बचाई और मेरे कुनबे के बाकी लोगों को बचाया, मगर मेरे पास इस एहसान का बदला चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं अपने हाथ खो बैठा हूं और राकेश अपनी दोनों टांगे गवा चुका है। हम अपाहिज हो गए बेटी, हम अपाहिज हो गए। आज मैं उस दिन को याद करके पछता रहा हूं जब मैंने अपनी दौलत के घमंड में तो जैसी देवी को अपनी बहू बनाने से इनकार कर दिया था। बेटी, क्या तुम मेरी इस गलती को माफ कर सकती हो? बेटी, तुमने जहां मुझ पर इतना एहसान किया है, बस एक एहसान और कर दो।
1: कहिए पिताजी।
0: मैं अपने बेटे का हाथ तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूं। क्या तुम इस अपाहिज को अपना बना लोगी बेटी? बोलो।
1: हाँ पिताजी।
0: सूरज बेटे, तुमने कहा था कि तुमने रजनी को अपनी बेटी की तरह पाला है। आज तुम राकेश के भी पिता बनकर इस काम को पूरा करो जो मुझे करना था। राकेश का हाथ रजनी के हाथों में सौंप दो बेटे। आज से राकेश की देखभाल की जिम्मेदारी रजनी की है और इन दोनों की देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी। आज तक तुम सिर्फ रजनी के पिता समान थे सूरज बेटे, और आज से तुम दोनों के लिए ही पिता समान रहोगे।

जिम्मेदारी। अभी आपने जनाब ओम शर्मा की लिखी है गीतों भरी कहानी सुनी। सदाकार थे गुलजार लोधी, रमा गोयल, सुरेंद्र कौशिक और मोहम्मद बदीउज़्ज़मा। मीडियम वेव 1071 किलो है।

मोबाइल ऐप, न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। फिल्मी मौसीकी लिए सामीन कुछ और फिल्मी नगमे समाप्त फरमाइए।

शान फिल्म में आपने आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और उषा मंगेशकर को सुना। लीजिए सुनिए रूही फिल्म का नगमा, सुरेश वाडेकर का गाया।

प्रोफेसर प्यारे लाल, अभी आपने इस फिल्म का ये नगमा सुना आशा भोसले की आवाज़ में, और अब समाप्त कीजिए कर्ज फिल्म से नगमा। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और साथियों की।

आप सुनिए लता मंगेशकर का गाया ये नगमा फिल्म बाजार से।

0: मोहम्मद रफ़ी को आपने सुना फिल्म धोखेबाज में। थ्री इडियट ये इस फिल्म में सुनिए सोनू निगम को।
1: देंगे तुझे जाने तुझे।

और लीजिए प्रोग्राम के आखिर में समाप्त कीजिए कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में फिल्म माशूका का ये नगमा।

ये आकाशवाणी है, अब आप फैसल हबीब से खबरें सुनिए। G7 रहनुमाओं ने कई ऐलामियों को मंजूरी दी है, जिनमें आलमी इस्तेहकाम, सलामती से मुतालिक ताउन और मुल्क के माबैन मुनज़्ज़म जराइम से निपटने की कोशिशों पर तवज्जो मरकूज की गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के शहर इवान में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस से अलग अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। जनाब मोदी फ्रांस के अपने दौरे के हिस्से के तौर पर आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। वज़ीर दफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की खुद मुख्तारी के साथ कोई समझौता नहीं है। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए फैसला कुन कार्रवाइयों पर के तौर पर जिक्र किया। भारत के दफाई साजो सामान की तैयारी में माली साल 2025-26 के दौरान 1.78 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, जो 2020-21 से अब तक 110% इजाफा है। हिफाजती दस्तों ने मणिपुर में कानून नाफिज करने और शोरिश पसंदी से निपटने की कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार और 26 गैर कानूनी बुनकर्स को मुनहदिम किया गया है। और फीफा आलमी कप में लियोनल मेसी ने अल्जीरिया के खिलाफ हैट्रिक लगाई, जिससे अर्जेंटीना ने ये मुकाबला 3-0 से जीत लिया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस के शहर इवान में जारी G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में एक अहम वर्किंग सेशन में शिरकत कर रहे हैं, जिसका मौजू सभी के मफाद के लिए मुतवाजिन, सबकी शमूलियत वाली और

0: के मुल्क ही में तैयार किए गए दफाई साजो सामान की मकदार में माली साल 2013-14 के मुकाबले तकरीबन 4 गुना इजाफा हुआ है, जो महज 4,746 करोड़ रुपए था। मणिपुर में हिफाजती दस्तों ने रियासत भर में शोरिस से निमटने और कानून नाफिज करने वाली कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। हुकाम ने आज बताया कि अलग अलग कार्रवाइयों में 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार और 26 गैर कानूनी बुनकरों को तबाह कर दिया गया है। गिरफ्तार किए गए दहशतगर्दों की शनाख्त ममनुआ पीपल्स लिबरेशन आर्मी और इसके सियासी विंग रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट के तौर पर की गई है। इन लोगों को मगरबी जिला इम्फाल के मुख्तलिफ मकामात से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि ये लोग बहुत सी पुरतशद्दुद और मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस थे। हिफाजती दस्तों ने कामजोंग और उखरुल जिलों में 26 बुनकर्स को गिराया है, जिन्हें मुबैना तौर पर ये मुसल्लह ग्रुप इस्तेमाल करते थे। फीफा आलमी कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया ने आज उर्दुन को 3-1 से हराया। ये ऑस्ट्रेलिया की 36 साल में आलमी कप की किसी मुकाबले में पहली जीत है। इससे कबल दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने आज सुबह अमेरिका के कांसास सिटी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में अल्जीरिया को 3-0 से हराकर शानदार जीत हासिल की। लियोनल मेसी ने इस मुकाबले में हैट्रिक के साथ अपना 14वां, 15वां और 16वां आलमी कप गोल करते हुए तारीख रकम की। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। G7 रहनुमाओं ने कई ऐलामियों को मंजूरी दी है, जिनमें आलमी इस्तेहकाम, सलामती से मुतालिक ताउन और मुल्कों के माबैन मुनज्जम जराइम से निपटने की कोशिशों पर तवज्जो मरकूज की गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के शहर ईवान में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस से अलग अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करेंगे। जनाब मोदी फ्रांस के अपने दौरे के हिस्से के तौर पर आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की खुद मुख्तारी के साथ कोई समझौता नहीं है। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए फैसला कुन कार्रवाइयों के तौर पर जिक्र किया। भारत के दफाई साजो सामान की तैयारी में माली साल 2025-26 के दौरान 1.78 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, जो 2020-21 से अब तक 110% इजाफा है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। 5 बजना चाहते हैं। अब हमारी दूसरी मजलिस की नशरियात अख्तताम को पहुंचती हैं।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और डीरम चैनल 909 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। संध्या के 5 बज चुके हैं। अब प्रस्तुत है हमारे नौजवान साथियों के लिए उनका दैनिक कार्यक्रम युवा वाणी।

सभी युवा साथियों का प्रिय कार्यक्रम युववाणी लेकर आप सभी के बीच उपस्थित हैं आपका अपना साथी करण वर्मा। श्रोताओं नमस्कार, आज बुधवार है जिसका इंतजार हम सभी को बेसब्री से रहता है, क्योंकि हर बुधवार हम युववाणी कार्यक्रम में प्रस्तुत करते हैं फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद, जिसमें हम आपके पत्र पढ़ते हैं और आपकी पसंद के गीत भी आपको सुनवाते हैं। साथियों, आज के युववाणी कार्यक्रम में आपकी पसंद के साथ साथ हम आपको सुनवाएंगे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर श्रोता साथियों नरेंद्र सुथार, प्रेम देवी सीमर और डॉक्टर राकेश शर्मा से नरेश वर्मा की बातचीत। संयोजक होंगे नवीन सिसोदिया। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म चलते चलते के इस गीत के साथ। इस गीत की

फरमाइश हमें भेजी है उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश ने। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव ने। फाजिलका पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश, योगेश, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया ने। खरगोन मध्य प्रदेश से परवीन श्रीमाली और मीना श्रीमाली ने। निज़ामाबाद तेलंगाना से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना और दानिश आसिफ जोरान शेख ने। सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गोहर, श्रीमती वंदना गोहर, मयंक और तन्वी गोहर ने। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला, विशाल और निशा ने। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन और अपार ढिंगिया ने। सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो और विलिस डिकैस्ट्रो ने। अमरपुरा जालूखाट से जगदीश चंद्र प्रजापति, विमला, मोनू और राजेंद्र प्रजापति ने। लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

साथियों, किसी ने कहा है, खामोशियों में भी एक शोर होता है। हर अधूरी कहानी का एक दौर होता है। जो मुस्कुरा कर छुपा लेते हैं दर्द अपना, वो ही असल में सबसे मजबूत इंसान होता है।

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: साथियों, अगली फरमाइश हमें भेजी है पत्रोड़ा जिला श्रीगंगानगर से मंगल जनागल, श्रीमती रोशनी, अंकुर, इंदु और डॉक्टर सुनील जनागल ने। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी ने। उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर राही, श्रीमती सरिता गवाणकर, परणीता सिद्धांत गवाणकर और अर्जुन गवाणकर ने। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा ने। आदर्शनगर बठिंडा से इंजीनियर अशोक ग्रोवर, परवीन ग्रोवर, नीति, पवनीत और विक्रमजीत ग्रोवर ने। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा, रजत और मयंक भाटिया ने। खारिया जिला सिरसा से प्रताप जिनागल, इंद्रा, मुकेश, दिनेश, अंशु और बलदेव कटारिया ने। नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जसी, सीता और गीता ने। सागर मध्य प्रदेश से लाडला जी चौबे, लाडली जी चौबे, रिमझिम और सक्षम चौबे ने। दतरंगी छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा ने। जलंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़ और भरत मक्कड़ ने। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल, जूली और जगदीश जोहारी ने।

मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मल्लिक, आकांक्षा मल्लिक और माही मल्लिक ने। महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता, साक्षी, जयश्री महेत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय और पी बी कुलथे ने। तो श्रोताओं, लीजिए सुनिए आपकी फरमाइश पर ये गीत फिल्म आन मिलो सजना से।

0: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर श्रोता साथियों नरेंद्र सुथार, प्रेम देवी सीमर और डॉक्टर राकेश शर्मा से नरेश वर्मा की बातचीत। संयोजक है नवीन सिसोदिया। लीजिए सुनिए।

0: सभी सुनने वालों को हमारी तरफ से नमस्कार। दोस्तों, मैं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त नरेश वर्मा, और हमारे साथ हैं हमारे बरसों पुराने कुछ श्रोता। आकाशवाणी ने अपने 90 साल अभी पूरे किए हैं। इस अवसर पर हमने हमारे बहुत से श्रोताओं से बातचीत की है और आप तक पहुंचाई है। इसी क्रम में आज नोहर हनुमानगढ़ क्षेत्र के हमारे कुछ श्रोता साथी हमारे साथ जुड़े हैं। रेडियो के बारे में, रेडियो के प्रोग्रामों के बारे में, और रेडियो का जो 90 सालों का ऐतिहासिक और गौरवशाली वक्त जो रहा है, उसके बारे में इनसे चर्चा करते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं नरेंद्र जी सुथार। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार नरेश वर्मा जी, और आकाशवाणी के जो भी श्रोता हैं उनको भी मेरी तरफ से नमस्कार।
0: और हमारे साथ जुड़ी हैं श्रीमती प्रेम देवी जी सीवर। आप भी बरसों से रेडियो सुनती आ रही हैं, बहुत स्वागत करते हैं, आपको भी नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: और अब हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश जी शर्मा। आप बरसों से रेडियो सुन रहे हैं और बरसों से एक डॉक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आपका भी हम स्वागत करते हैं, बहुत बहुत नमस्कार जी।
3: जी नरेश जी नमस्कार।
0: बातचीत की शुरुआत करते हैं हम, सालों की बात हो रही है, 90 साल की बात हो रही है, तो मैं सबसे पहले डॉक्टर राकेश जी शर्मा से पूछना चाहता हूँ कि इन 90 सालों में आपने कितने साल रेडियो सुन लिया?
3: यहाँ मैं रेडियो सुनने वाले सभी रेडियो दोस्तों को, रेडियो प्रेमियों को आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और यहाँ मैं कहना चाहूंगा, मेरी उम्र फिलहाल करीब 50-51 वर्ष है, तो इसमें से अधिकांश वर्ष मैंने रेडियो सुना है। यूं कहें कि जब से मैं 8 या 10 साल का था तब से मैं रेडियो सुन रहा हूँ, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में हम रहे हैं तो आकाशवाणी सूरतगढ़ से हमारा विशेष लगाव रहा है। जहाँ मैंने रेडियो सुनना शुरू किया था वहाँ रेडियो सूरतगढ़ के प्रोग्राम मैंने विशेष तौर से सुने हैं।
0: 90 सालों में से आपको हम मान सकते हैं कि 40-45 साल हो गए रेडियो सुनते हुए। तो बचपन में आप रेडियो सुनते थे, पढ़ाई के दौरान आप रेडियो सुनते थे, उस वक्त पढ़ाई में भी आपको रेडियो ने कितना प्रभावित किया?
3: रेडियो का विशेष रोल रहा है सर मेरे जीवन में। बेसिकली मैं गांव का रहने वाला हूँ, ग्रामीण परिवेश से आता हूँ, तो वहाँ केवल रेडियो ही एकमात्र साधन हुआ करता था, मनोरंजन का भी, ज्ञान सूचना और तमाम तरह की संस्कृति संबंधी जानकारियों का, या विकास से जुड़े कार्यों का, या कोई देश विदेश की बातचीत सुनने का एकमात्र साधन रेडियो हुआ करता था। तो रेडियो सुनते सुनते हम बड़े हुए हैं, और यह एक ऐसा माध्यम रहा है जो, पढ़ाई की बात करें या किसी अन्य काम की बात करें, रोजगार की बात करें, यह किसी भी तरीके से हमारे रोजमर्रा के कामों में खलल नहीं डालता है, किसी भी तरह से बाधित नहीं करता है, और साथ साथ हमारे मनोरंजन होता रहता है, और साथ में हम अपने रोजमर्रा के काम भी कर सकते हैं जिनमें

0: पढ़ाई भी शामिल है। एक तरह से रेडियो मध्यम आवाज में बजता रहता था और साथ साथ हम पढ़ाई के वक्त पढ़ते रहते थे या किसी अन्य काम, घर के घरेलू जो काम होते थे उनमें लगे रहते थे।
1: और आपने बिल्कुल सही कहा कि उस वक्त मनोरंजन का साधन जो है वो रेडियो ही हुआ करता था। और आपने गांव की बात की तो हम आपसे पूछना चाहते हैं आपका गांव कौन सा है और गांव में भी क्या उस वक्त और अब भी लोग आपके साथ कौन कौन होते हैं जो रेडियो सुनते हैं।
0: जी, मैं मूलतः नोहर के नज़दीक मेरा गांव है गोरखाना, वहीं पला बढ़ा हूँ और 8वीं तक मैंने पढ़ाई भी वहीं करी है। वो ऐसा दौर था, करीब 80-85 के आसपास की बात है, और सामूहिक रूप से घर वाले और पड़ोस के और सभी मतलब सोसाइटी के लोग मिलजुल करके रेडियो सुना करते थे और उसी पे परिचर्चाएँ, उसी पे बातचीत संवाद होते रहते थे कि भाई आज रेडियो में ये प्रोग्राम आया, ये हमें अच्छा लगा, ये समाचार चल रहे हैं, अभी देश विदेश में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उस तरह की बातें हुआ करती थी।
1: माता पिता आज भी रेडियो सुनते हैं क्या?
0: जी, अभी तो उनकी उम्र काफ़ी हो गई है, लेकिन यूं कहें कल ही की बात है कि रेडियो लगातार वो सुनते रहे हैं और हमारे पास वो पुराने बैंड वाला जो रेडियो आता था वो रेडियो हमारे घर पे मौजूद है गांव में। और आज भी वृद्ध जो माता पिता हैं वो भी और हमारे जो अन्य जो भाई बहन भतीजे जो भी हैं परिवार में रहते हैं वो सब लोग सुनते हैं रेडियो, किसी न किसी रूप में रेडियो से अवश्य जुड़े हैं वो।
1: आपसे चर्चा जारी रहेगी, हमारे साथ नरेंद्र जी सुथार भी हैं। इनसे सबसे पहला सवाल भी यही है कि आपको कितने साल हो गए रेडियो सुनते हुए?
2: जी, मेरे को रेडियो सुनते हुए लगभग 25 साल हो गए और इन 25 सालों में मैंने पढ़ाई की 8वीं तक, उसके बाद मैं फर्नीचर का काम करने लग गया और रेडियो मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा था और अब भी है, क्योंकि मैं जानकारियां और समाचार, मनोरंजन के प्रोग्राम सभी सुनता हूं और आकाशवाणी सूरतगढ़ से मैं सपेक्षर जुड़ा हुआ हूं।
1: आकाशवाणी सूरतगढ़ पर तो आपके लगातार मेल, संदेश और खत हमें मिलते रहते हैं जो हमें बताते हैं कि आप बड़ी शिद्दत के साथ रेडियो सुनते हैं। एक बात और मुझे याद आई है कि आपके साथ बहुत नाम होते हैं, कुछ मिस्त्री, कालू मिस्त्री, शंकर बिहारी, कुछ इस तरह के नाम, और कौन कौन रेडियो सुनते हैं आपके साथी और या परिवार वाले?
2: जी, मेरे परिवार वालों में मेरे बड़े भैया और मेरे पिताजी भी रेडियो अब भी सुनते हैं और बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं वो। अब मैं जो फर्नीचर का काम करता हूँ वो मिस्त्रीगण मेरे साथ हैं। रेडियो सुबह 9 बजे से लेकर निरंतर चलता रहता है और सभी मिस्त्री भाइयों के मैं नाम भेजता हूँ मेरे साथ, और मेरा एक छोटा भाई है मनोज और मेरा बेटा है हिमांशु, उनका भी नाम मैं भेजता हूँ।
1: सुबह से लेकर शाम तक काम भी चलता रहता है और रेडियो भी चलता रहता है और रेडियो के जरिए आप मनोरंजन करते रहते हैं।
2: राजस्थानी में जितने भी सूरतगढ़ से प्रोग्राम आते हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जैसे चौपाल हो गया, गोरबंद, और जो फरमाइश के हिंदी फिल्मी गीतों के प्रोग्राम आते हैं वो भी मैं सुनता हूँ, और सुबह सुबह 8 बजे जो समाचार आते हैं दिल्ली से वो मैं रोज़ाना सुनता हूँ।
1: तो रेडियो ने काम को कभी बीच में रुकावट के रूप में या किसी तरह से प्रभावित नहीं किया?
2: रेडियो ने प्रभावित नहीं किया, रेडियो से सुनने से मन लगा रहता है काम में और साथ में जानकारियां भी मिलती रहती है और मनोरंजन भी होता रहता है।
1: कोई ऐसा खास प्रोग्राम जिसने आपको बहुत ज्यादा प्रभावित किया हो?
2: रेडियो तो बहुत पहले से सुनता हूँ, लेकिन कभी पत्र व्यवहार और ईमेल मैंने नहीं किए पहले पुराने समय में। अभी 5-6 वर्षों से मैं पत्र भेजता हूँ और ईमेल भेजता हूँ, सभी जो अनाउंसर है उनके प्रोग्राम सुनता हूँ, प्रतिक्रिया लिखता हूँ। चौपाल में रमेश सांवरिया जी और गोरबंद में रोहतास शर्मा जी, और जो हिंदी फिल्म संगीत ले के आते हैं जो अनाउंसर है वो सभी मेरे प्रिय हैं।
1: चर्चा आप सभी के साथ जारी है, हमारे साथ हैं श्रीमती प्रेम देवी जी सीमर, आप गृहिणी हैं और घर का काम करते करते हमने सुना है कि आपका रेडियो भी सुबह से लेकर रात तक चलता रहता है, प्रोग्राम आप सुनती रहती हैं। आपसे भी सबसे पहला यही सवाल रहेगा कि इस सफर में आपने कितने साल रेडियो सुन लिया?
3: मैं बचपन से रेडियो सुनती आ रही हूँ, मेरे पिताजी बचपन में रेडियो सुनते थे और जब हम छोटे थे तो होश संभाला तभी से रेडियो सुनते आ रहे हैं। जब रेडियो चलता रहता था जानते नहीं थे कि अब समाचार आ रहे हैं या अब गीत आ रहे हैं, पुराने गीत बहुत पसंद है मुझे, तो समाचारों का इंतजार करते थे कि ये कब खत्म हो और कब गाना बजे, और जब गाने बजते थे तो मन मन में बहुत खुश होते थे क्योंकि उस समय रेडियो कम, लड़कियां कम सुनती थी, तो मुझे बहुत प्यार था रेडियो से। मेरे पिताजी ने बाद में मुझे अलग से रेडियो लेके दिया तो

0: में दो रेडियो हुआ करते थे, पिताजी अलग से दुकान में चलाते थे रेडियो और घर में मेरे लिए अलग। और जब मेरी शादी हुई तो कुछ दिन रेडियो से नाता टूट गया। मैंने पिताजी को बताया कि वहाँ रेडियो नहीं है, तो मेरे पिताजी ने अलग से रेडियो खरीद के मुझे मेरे ससुराल में पहुंचाया था। इस तरह से मुझे रेडियो से बहुत प्रेम है और हमेशा रहेगा। मैंने लगभग पूरी उम्र होश संभाला, तब से आज तक रेडियो सुनती आ रही हूँ। मैंने कभी रेडियो से नाता नहीं तोड़ा।
1: कितने साल हो गए लगभग, आप कितने साल मानती हैं आपको रेडियो सुनते हुए?
0: मुझे 45-46 साल हो गए, क्योंकि 4-5 साल की उम्र में समझ आने लगा था कि ये रेडियो बज रहा है, तब से मैं रेडियो सुनती आ रही हूँ। अब तो और ज्यादा रेडियो अच्छा लगता है, तब से भी। तब समझ में नहीं आता था कि क्या चल रहा है, क्या सुन रहे हैं। अब तो हर तरह का ज्ञान लेते हैं, हर तरह की सीखते हैं कि ये रेडियो से शिक्षा मिल रही है, ये बोलना सीखना, ये सब सब कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। रेडियो सुबह 7 बजे से रात की 9 बजे तक चलता रहता है घर में।
1: डॉक्टर राकेश जी शर्मा, अगला सवाल हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप आकाशवाणी सूरतगढ़ तो सुनते ही हैं, आकाशवाणी सूरतगढ़ के साथ साथ आप और कौन कौन से केंद्रों के प्रोग्राम सुनते हैं?
2: आकाशवाणी सूरतगढ़ के अलावा मैं विविध भारती अक्सर सुनता हूँ। विविध भारती पर मनोरंजक प्रोग्राम है जो काफी अच्छे अच्छे आते हैं। इसके अलावा चूरू सुनता हूँ, और कुछ समय के लिए जैसे बीकानेर चला गया था मैं पढ़ाई करने, तो उस वक्त ट्रांजिस्टर सेट पे बीकानेर केंद्र भी सुना है। और इसी तरह दिल्ली के कार्यक्रम भी हम सुनते रहते हैं। दिल्ली से किसी समय में धीमी गति का समाचार बुलेटिन आया करता था, वो मैं बिल्कुल उसको डिक्टेट करता था, बिल्कुल बाकायदा लिखता था और अपनी हैंडराइटिंग इम्प्रूव करने की कोशिश करता था।
1: आकाशवाणी सूरतगढ़ के कुछ प्रोग्रामों के अगर आप नाम लेना चाहते हैं जिन्होंने आपको विशेष रूप से प्रभावित किया हो, जो आपको खास अच्छे लगते हो।
2: देखिए, रेडियो हमें जिंदगी जीना सिखाता है, और इसी क्रम में जैसे ही रेडियो की सभा शुरू होती है तो वो उठने का वक्त होता है, और वहीं से हमारा जो है दिनचर्या शुरू होती है। और वंदना कार्यक्रम सुनते हैं, उसके बाद में जो आजकल सुप्रभात कार्यक्रम आता है वो सुनते हैं, और फिल्म संगीत के कार्यक्रम आते हैं, राजस्थानी गानों के कार्यक्रम जो आते हैं, मरुमंगल है और चौपाल है, ये सब सुनते हैं। इसी तरह हम गोरबंद और मिट्टी दी खुशबू, एक काफी लोकप्रिय कार्यक्रम अपने यहाँ केंद्र से आता है। और इसी तरह प्रस्तोता की बात करें तो रोहिताश जी शर्मा हैं, दुर्गा राम जी हैं, विकास जी पारीख और सुमन जी शेखावत हैं, सभी उद्घोषक यहाँ के हैं जो अच्छे हैं।
1: सुथार जी, आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप बताइए परिवार में आपके कौन कौन लोग रेडियो सुनते हैं?
3: मेरे परिवार में मेरे पिताजी और मेरा छोटा भाई मनोज और बेटी सुचित्रा है, वो विशेष उनका रेडियो से लगाव है, और वो ज्यादातर राजस्थानी प्रोग्राम जो आते हैं गोरबंद चौपाल वो ही ज्यादा सुनती है, और उनमें मैं उनके नाम भेजता हूँ।
1: सुतार जी, आप जैसे बहुत से हमारे श्रोता हैं जो आज भी रेडियो से लगातार जुड़े हुए हैं, बरसों से जुड़े हुए हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि आप हमारे श्रोताओं के लिए रेडियो के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं?
3: जी, मैं श्रोताओं को रेडियो के बारे में यही कहना चाहूँगा कि रेडियो एक बहुत ही अच्छा संसाधन है जो हमें ज्ञानवर्धक जानकारियाँ देता है और मनोरंजन भी देता है, और कुछ भी खर्चा नहीं आता फ्री में, और साथ में हम जो भी जॉब करें, काम करें, पढ़ाई करें, वो भी कर सकते हैं, यही मेरा कहना है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने, कार्य में भी व्यवधान नहीं होता बल्कि मनोरंजन के साथ साथ कार्य करने में भी आसानी हो जाती है। प्रेम देवी जी हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि आकाशवाणी सूरतगढ़ से महिलाओं के भी कई कार्यक्रम आते हैं, तो क्या आप लगातार सुनती हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है?
0: हाँ, महिला जगत और जो घर आंगन प्रोग्राम होता है वो हम सुनते हैं दोपहर में, वो प्रोग्राम तो मैं जरूर सुनती हूँ। चाहे कहीं भी हम, मेरी माँ का ऑपरेशन हुआ था, उस समय ICU के आगे मैं बैठी थी, और वहां भी मैंने कोशिश की कि मैं सुनूं, पर मैं सुन नहीं पाई, पर मैं सुनती हूँ ये प्रोग्राम महिला जगत जरूर।
1: इन कार्यक्रमों के अलावा अगर आपको ध्यान में हो किस कार्यक्रम ने आपको बहुत ज्यादा प्रभावित किया हो, अगर किसी और कार्यक्रम का आप नाम लेना चाहें तो आप हमें बताएं जरूर।
0: और सभी प्रोग्राम तो अच्छे लगते हैं, जैसे गीत गंगा, मिट्टी दी खुशबू और गोरबंश विशेषकर, वो भी मैं सुनती हूँ। और 11 बजे गीत तो आता है, गीतमाला रेडियो चलता रहता है, तो गीत सभी प्रोग्राम सुनते हैं।
1: हमारे यहाँ से फोन इन प्रोग्राम भी आते हैं, फोन इन फरमाइश के, क्या आपने भी कभी फोन लगाने की कोशिश की?
0: हाँ, बात हुई है मेरी 1-2 बार।
1: तो उस वक्त फोन इन कार्यक्रम में फोन लगना और फिर अपनी फरमाइश का गीत सुनना आपको कैसा लगता है?
0: बहुत खुशी हुई है, हमारा प्रोग्राम में कॉल लगा तो बहुत खुशी हुई।
1: आप पुरानी श्रोता हैं, हमारी बरसों से जुड़ी है, और नई पीढ़ी जो है उसने

0: रेडियो सुनना थोड़ा कम कर रखा है, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं?
1: देखिए, रेडियो एक ऐसा साधन है कि स्वच्छ मनोरंजन इसमें जो होता है वो ऐसा कहीं भी नहीं होता, मोबाइल में या कुछ कहाँ भी कहीं भी नहीं सकता। स्वच्छ ज्ञान और स्वच्छ मनोरंजन रेडियो से ही मिलता है। स्वच्छ भाषा, उच्चारण, सब कुछ रेडियो पर उपलब्ध होता है, वो और कहीं नहीं है।
0: बिल्कुल आपने सही कहा, रेडियो जो है वो विश्वसनीयता का दूसरा नाम है। यहाँ पर जो सटीक जानकारी मिलती है, जो सूचना और जो शिक्षा के बारे में और जो मनोरंजन मिलता है, ऐसा जो है अन्य माध्यम कहीं और नज़र नहीं आता। डॉक्टर राकेश जी, आपसे भी जाते जाते यही सवाल है कि नई पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, जो आजकल के लोग कम सुनते हैं, तो आप रेडियो के बारे में उनको क्या संदेश देना चाहते हैं?
2: मैं यही कहूंगा कि भी आकाशवाणी कहीं भी आप किसी भी तरह का मनोरंजन या किसी भी तरह के समाचार या किसी भी तरह की ज्ञानवर्धक जो बातें सुनते हैं, रेडियो के माध्यम से वही बात हम सुनने जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो सत्यता उसकी खरी है, मतलब सत्यता पर वो पूरा उतर रही है। अगर परिवार में सब लोग रेडियो सुनेंगे या बड़े बुजुर्ग सुनते रहेंगे तो बच्चे भी उन्हीं से वही सीखते हैं और उनको सीखने को मिलता है। हमारे मम्मी पापा या बहन भाई सुन रहे हैं तो क्यों ना हम भी सुनें।
0: मतलब यूं है कि कुछ अच्छा प्राप्त करने के लिए, कुछ अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए आजकल भी जो है जनरेशन है उसको रेडियो सुनना चाहिए।
2: बिल्कुल, रिलायबिलिटी इसकी है ना, जो बहुत ही विश्वसनीयता का कहें तो एक नंबर पे है आज भी रेडियो।
0: मनोरंजन के कुछ कार्यक्रम होते हैं जैसे सुगम संगीत के हैं, लोक संगीत के कार्यक्रम हैं, फिल्म संगीत के कार्यक्रम हैं, तो इनमें तो गीतों गजलों के जरिए हमारा मनोरंजन होता है। इसके अलावा जो स्पोकन वर्ड के भी कुछ कार्यक्रम हमारे होते हैं, वार्ता से लेकर रूपक झलकी नाटक वगैरह, तो उनमें भी आपकी रुचि है क्या?
2: हाँ बिल्कुल, रेडियो हमें हर तरह से अलग अलग विधाओं में हमारा मनोरंजन भी करता है, जानकारियां भी देता है। वो उसी का रूप है, रूपक है, नाटक है, झलकी या अन्य तरह की चर्चाएं, परिचर्चाएं, ये सब रेडियो पर अगर सुनते हैं तो उनसे न केवल हमारा उच्चारण और बोलने का लहजा सुधरता है बल्कि हमें तरह तरह की जानकारियां भी मिलती हैं और हमें कला और संस्कृति में आगे बढ़ना चाहते हैं जो लोग, वो रूपक, नाटक, झलकी और इनके माध्यम से कुछ सीख करके वो इस क्षेत्र में भी अपना कुछ दिखा सकते हैं। मतलब
0: यानी हम ये कह सकते हैं कि आपकी नाटक झलकियां वगैरह सुनने में भी रुचि है। पिछले दिनों सुना गया कोई नाटक, अगर उसका कुछ आपको याद हो तो आप हमें बताना चाहें।
2: हाँ, अभी हाल ही में आकाशवाणी सूरतगढ़ से ही हमने एक या दो नाटक सुने थे। एक था आखिरी खत और एक था अंतर्स का उजास, ये दोनों नाटक अभी हमने सुने थे। और इसी तरह कई परिचर्चाएं हैं, कई इंटरव्यूज हैं और कई लाइव इंटरव्यूज हैं, वो सुनते रहते हैं हम लोग। उनसे बहुत सारी जानकारियां भी मिलती हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर
0: जी। ये सवाल हमने इसीलिए किया था क्योंकि जो गीत संगीत के जरिए मनोरंजन होता है उसके साथ साथ जो हमारे नाटक झलकी, रूपक वगैरह, परिचर्चा, भेंट वार्ताएं, इनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज की चर्चा हमारी बहुत ही अच्छी रही। हमने ये भी सुना है कि आपकी गजलों में रुचि है, आपकी पसंद के कलाकार कौन है?
2: यूं तो हर तरह के कार्यक्रम सुनते हैं, हर तरह के गीत संगीत हमें पसंद है, बट मदन मोहन जी की संगीतबद्ध किए काफी गाने हैं जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। जगजीत सिंह की गजलें हैं वो मैं खास तौर से पसंद करता हूँ। ट्रेनिंग करते थे, मेडिकल की पढ़ाई करते थे, उस वक्त गजलों का कलेक्शन किया था जगजीत सिंह की। स्पेशली गजल अपने आप में एक अलग गायकी की अलग विधा है जिसमें शब्दों या यूं कहें बोल का काफी मतलब प्रोमिनेंसी रहती है।
0: आपको चलते चलते जगजीत सिंह की आवाज में हम एक गजल सुनवा देते हैं, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया।
2: जी धन्यवाद बहुत।
0: नरेंद्र जी सुतार, आपका भी बहुत शुक्रिया।
3: जी धन्यवाद।
0: और प्रेम देवी जी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका भी बहुत धन्यवाद। आपका
1: जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और रेडियो के 90 वर्ष होने के उपलक्ष्य में आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: और अब नमस्कार।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर श्रोता साथियों नरेंद्र सुथार, प्रेम देवी सेवर और डॉक्टर राकेश शर्मा से नरेश वर्मा की बातचीत। संयोजक थे नवीन सिसोदिया। श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए फिल्म शूरवीर का ये गीत। इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतन माला और ओम कुमार सुरलकर ने। केसरी सिंहपुर से संदीप कुमार, राजपाल, गेजा सिंह जी और माडू राम जी ने। गांव जोगीवाला श्री गंगानगर से प्रेम सहरण, मोनिका और मनीष सहरण ने। बेहरवाला खुर्द सिरसा से बलवंत जाखड़, ममता, प्रिया नैना, हिमानी जाखड़ और शिवम जाखड़ ने। हनुमानगढ़ टाउन से सुल्तान सिंह तरड़, कृष्ण मुकेश, रामचंद्र, कपिल देव और कांता चौधरी ने। गांव कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, साइना हसन, अक्सा, नाजिया आफिया, इब्राहिम सदाम और अदीब ने। हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, श्रीमती नंदा, हनुमान और उत्तम जमदाडे ने। सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा और पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा ने। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा ने। मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या, निवेश और नियति कुमारी ने। खोखरावाली से विनोद बारासा, विशाल, विकास, रोशनी बारासा और शगुन बारासा ने। मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गोड ने। लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरलाल, अविराज, गुरनूर और शुभदीप सिंह ने। लीजिए सुनिए आपकी फरमाइश पर ये गीत।

उत्तरा राजस्थान से मोहनलाल प्रजापत, मानक, उषा, बाला देवी प्रजापत। गांव फ्रांसी, जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और सौरभ डूडी ने। गोविंदपुरा सीकर से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत ने। रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और अंकित कांगड़ा ने। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा ने। ढाणी से लाल खा, जावेद खा, अरमान खा, इमरान खान, सीमा बानो, विनोद खा ने। छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डोली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया ने। लखुवाली हेड से मास्टर भंवरलाल, कृष्णा, सौरभ, विशाल, राजबाला, ममता, नव्या, लक्षिता, मोहम्मद रफीक, संगरिया मुकना राम और महावीर लोहरा ने। नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी ने। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल, ईशान और पूजा परिहार ने। लीजिए सुनिए, आपकी फरमाइश पर ये गीत फिल्म प्यार ही प्यार से।

दोस्तों, अगली फरमाइश हमें भेजी है महाराष्ट्र से PS नहावकर, निर्मला नहावकर और विशाल नहावकर ने। गांव घमंडिया सूरतगढ़ से जगदीश ढुकिया, प्रमीला, ज्योति, शिवम, सरिता, सचिन, अमना, तमन्ना, साइना, विष्णु, दोहिती और ईवा धारणिया ने। नोखा राजस्थान से पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धन धरा, घनश्याम भार्गव, बाबू गोरी और हसन सिक्का ने।

0: दोस्तों, अगली फरमाइश हमें भेजी है डब वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग ने। गंज ढुंडवारा से शमसूल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैज़ान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी ने। हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां ने। होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल और दीपांशु खोरवाल ने। जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, रीतिक और बलवीर सिंह ने। लीजिए आपकी फरमाइश पर ये गीत फिल्म एक नज़र से।
1: शबनम, तेरे लिए मैंने तुझे पाला है, मैं तुझे जान से मार डालूंगी, जान
2: डालो, वरना कहीं ऐसा ना हो मेरी मोहब्बत के रास्ते में आने वालों की जिंदगी मैं ले लूं।
1: क्या कहा?

दोस्तों, यदि आप भी हमें पत्र भेजना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है आपकी पसंद युववाणी कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी कोटन सिटी सूरतगढ़, पिन कोड 335804। आप सभी के पत्रों का हमें इंतज़ार रहेगा। तो मित्रों, इसी बातचीत के साथ आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम यहीं तक। अब अपने साथी करण वर्मा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

अभी नौजवान साथियों के लिए युववाणी कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स, FM बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DRM चैनल 909 किलो हर्ट्स पर। संध्या के 6 बज चुके हैं, आइए सुने हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों और कल के कुछ मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:05 पर आप सुनेंगे सरायकी कार्यक्रम की कड़ी संख्या 9। शाम 7 बजे हैंडिंगले लिट्स क्रिकेट स्टेडियम में ICC T20 महिला क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट के अंतर्गत भारत और नीदरलैंड के बीच खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री हम आपको सुनाएंगे। यह कमेंट्री मैच की समाप्ति तक जारी रहेगी। कमेंट्री के दौरान आप संध्या 8:45 पर हिंदी में और 9 बजे अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे। हम आपको बता दें मैच का प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर नहीं होगा, इसे आप सिर्फ मीडियम वेव पर सुन पाएंगे। साथ ही FM पर भी ये क्रिकेट कमेंट्री आप सुन पाएंगे। और अब जान लेते हैं कल के कुछ मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा के बारे में। कल सुबह 7:30 पर कार्यक्रम होगा सुप्रभात। कल इस कार्यक्रम में संजय सोडा से नवीन सिसोदिया की बातचीत होगी। बातचीत का विषय रहेगा नशा वृत्ति और कानूनी प्रभाव। प्रातः 9:10 पर लोक संगीत का कार्यक्रम होगा मरुमंगल, जिसमें कल कलाकार होंगे करीम खां खेजड़ला। पशुपालकों के लिए शाम 5:30 पर प्रोग्राम होगा धीणेरी बाता। रात्रि 10 बजे राजस्थान दर्शन हम अपने जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। कल शाम 7 बजे चौपाल कार्यक्रम में ग्रामीण परिवार एक भेंट वार्ता सुनेंगे, जिसका विषय रहेगा नगरीय स्वच्छता। और हमारे मेहमान होंगे सफाई निरीक्षक महेंद्र सारसर। बातचीत करेंगे नवीन सिसोदिया। कल सुबह 9:30 पर फिल्म संगीत होगा। 10 बजे आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम अनुरोध गीत। कुछ बातें कुछ गीत का समय रहेगा 12:05। कल 1:05

पर महिला जगत कार्यक्रम में विषय रहेंगे बुजुर्गों में बढ़ता मोबाइल प्रेम, फायदे या नुकसान, स्क्रीन से लगाव छिन रहा बचपन, थायराइड के कारण और निवारण के बारे में जानकारी दी जाएगी और साथ ही जानेंगे भेलपूरी बनाने के तरीके। कल शाम 4 बजे संदेश टू सोल्जर हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शाम 5 बजे युवानी कार्यक्रम में कल सानिया कुमारी की वार्ता होगी, विषय रहेगा महिला सशक्तिकरण। ये थी जानकारी हमारी इस सभा के शेष और कल के कुछ मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की।

ऑल इंडिया रेडियो दी विदेश प्रसारण सेवा दा सिराइकी प्रोग्राम है। मैं हरजीत कौर तुहाडे कीते अज दा प्रोग्राम घिन के हाजिर हाँ। कुछ बाता कुछ गीत अज असा तुहाडे नाल बहु गल्लां भी करेनियां हन ते बहु वधिया गीत भी तुहाकू सुनवेंदे हाँ। सुनन आलियो, दुनिया विच एक बहु प्यारा रिश्ता है पिता पुत्र दा। जड़न घर विच पुत्र पैदा होंदा है ता माता पिता बहु खुशियां पाए मनावदे हन। वला उसको पाल पोस के वड्डा करेंदे हन। वला ओ भावे परदेसां विच वेंदे वसेंदे जां मां प्यो को ना पुछेंदे हन, पर मां प्यो पुत्र को किवें भूल जावन। इसे भाव को दर्शेंदा मैं तुहाकू एक गीत सुनवेंदी पई हां। गावन वाले हन AS कांग।

अभी आप सरायकी कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। मीडियम वेव 326.7 किलोमीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। इस समय संध्या के 6:30 होने वाले हैं। अब से थोड़ी देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिन्हें हम अपने जयपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं।

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अंतिम पायदान के व्यक्ति को जनहित योजनाओं और सरकारी सेवाओं से जोड़ने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन बनाने पर जोर दिया। और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से उनके संघर्ष को नमन किया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को पीएम विकसित भारत रोजगार योजना PMVBRY के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ के अनुसार नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम के माध्यम से ये राशि प्रदान की जाएगी। पिछले साल अगस्त में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना है। इस योजना से देश भर में लगभग 15 लाख आशार्थियों को रोजगार प्राप्त करने में सहायता मिली है। योजना के तहत पहली बार कार्यबल में शामिल होने वाले कार्मिकों को 15,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दो किस्तों में दी जाती है। साथ ही रोजगार देने वाले नियोक्ता प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए हर महीने 3,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त 20 जून को जारी की जाएगी। इसके माध्यम से 9 करोड़ 44 लाख से अधिक पात्र किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। इस किस्त के जरिए 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। योजना के तहत किसानों को हर साल 2,000 रुपए की 3 किस्तों में कुल 6,000 रुपए सालाना की आर्थिक सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज उदयपुर में शहरी सेवा शिविर का जायजा लिया।

0: श्री शर्मा ने उदयपुर विकास प्राधिकरण परिसर में आयोजित शिविर में लाभार्थियों को पट्टे, प्रमाण पत्र और दिव्यांगों को सहायता राशि के चेक तथा सहायक उपकरण वितरित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शिविर में मौजूद लोगों से बातचीत कर फीडबैक भी लिया। मुख्यमंत्री ने आमजन से अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों को शिविरों तक पहुंचाने में सहयोग करने का आह्वान किया, जिससे ज्यादा से ज्यादा पात्र व्यक्तियों को योजनाओं और सेवाओं का फायदा मिल सके। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों की सामूहिक भागीदारी से ही शिविरों की सार्थकता सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं और सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाना है।
1: मित्रों, इन शिविरों के माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारे शहरी क्षेत्रों में जो भी हमारे वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको उनका लाभ मिलना चाहिए, चाहे वो नामांतरण का हो, शुद्धिकरण का हो, बंटवारे का हो, पट्टों का हो, उसके घर में किसी तरह से कोई परेशानी जैसे नाली, सड़क, खरंजा, सिवरेज खराब, बिजली की व्यवस्था, ये सारे विषय उसमें आते हैं। हम चाहते हैं कि इन शिविरों का आम जन को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले।
0: पांचना बांध का पानी कमांड एरिया की नहरों में छोड़े जाने की मांग को लेकर सवाईमाधोपुर जिले के खंडीप गांव में किसानों का प्रदर्शन जारी है। इस बीच कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने मुख्यमंत्री श्री शर्मा से मुलाकात कर पानी छोड़े जाने के संबंध में पत्र सौंपा। उन्होंने मुख्यमंत्री से बातचीत कर समस्या का समाधान करने और तुरंत पानी छोड़े जाने का आग्रह किया। वहीं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने किसान प्रदर्शनकारियों से इस मामले पर जातिगत राजनीति नहीं करने की बात कही, साथ ही सामाजिक समरसता बनाए रखने पर जोर दिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज कोटा प्रवास पर हैं। वे शिक्षा व्यवस्था में सुधार और परीक्षाओं में पारदर्शिता को लेकर दशहरा मैदान में विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। बांसवाड़ा से सूरत जा रही एक यात्री बस आज तड़के वडोदरा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 27 यात्री घायल हो गए। घायलों को वडोदरा के SSG अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में जान गंवाने वाले लोग बांसवाड़ा के निवासी थे। दुर्घटना की सूचना मिलते ही NDRF और SDRF की टीमें तथा अन्य बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। आज विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस है। ये दिन मरुस्थलीकरण और सूखे के असर से निपटने के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सरकार ने 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए तेजी से काम किया जा रहा है। श्री यादव ने कहा कि ऐसे इलाके जहां मिट्टी में खारापन बढ़ने का खतरा अधिक है, वहां प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और यूरिया तथा केमिकल फर्टिलाइजर के अधिक इस्तेमाल से बचना चाहिए। उन्होंने विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की जरूरत पर जोर दिया।
2: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कॉप 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
0: जन आधार कार्ड को अब डिजी लॉकर पर प्राप्त और साझा किया जा सकता है। राज्य सरकार और डिजी लॉकर के बीच हुए समझौते के तहत प्रदेशवासियों को ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस व्यवस्था से नागरिक डिजी लॉकर ऐप या वेबसाइट पर लॉगिन कर अपना जन आधार दस्तावेज डाउनलोड और सुरक्षित रख सकेंगे। साथ ही जन आधार से जुड़ी विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं के लिए इसकी डिजिटल प्रति का उपयोग भी किया जा सकेगा। गौरतलब है कि राज्य में परिवारों की पहचान के लिए

0: आधार अहम दस्तावेज है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए इसे व्यापक रूप से काम में लिया जाता है। प्रदेश में शिशु मृत्यु दर IMR में लगातार सुधार हो रहा है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के ताजा आंकड़ों के अनुसार शिशु मृत्यु दर में एक अंक की कमी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग में शिशु स्वास्थ्य परियोजना निदेशक डॉ. प्रदीप चौधरी ने आकाशवाणी को बताया कि नियमित स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से शिशुओं को बेहतर देखभाल मिल पा रही है।
1: हमारे राज्य में जो नवजातों की जो बीमार नवजात है स्पेशली उनकी जो उपचार के लिए जो सुविधाओं का विस्तार हुआ है, अभी राज्य में 71 स्पेशल न्यूबोर्न केयर यूनिट्स, जिनको सामान्य भाषा में आप नर्सरी भी बोलते हैं, और लगभग 1,20,000 के लगभग नवजात वित्तीय वर्ष 25-26 में इन यूनिट्स में भर्ती कर उपचारित किए गए थे। उसके अलावा आशाओं द्वारा घर घर जाकर जो नवजात होते हैं उनकी होम बेस्ड न्यूबोर्न केयर विजिट किया जाना, उसके बाद 3, 6, 9, 12, 15 महीने पे भी बच्चों की विजिट आशाओं द्वारा की जाती है, उनका टीकाकरण इंश्योर किया जाता है। टीकाकरण का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है शिशु मृत्यु दर को कम करने में।
0: वीरता और स्वाभिमान के अमर प्रतीक महाराणा प्रताप की जयंती और हल्दीघाटी विजय के 450 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम रखे गए। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़ी ने भारतीय क्षत्रिय महासंघ की ओर से जयपुर में आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत की। इस मौके पर राज्यपाल ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का स्मरण करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। श्री बागड़ी ने कहा कि उन्होंने आत्मसम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया। उनका जीवन अन्याय और अनैतिकता से लड़ने की प्रेरणा देता है। इस अवसर पर उदयपुर में शोभा यात्रा निकाली गई और राष्ट्र चेतना संकल्प सभा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और विभिन्न धार्मिक पीठों के साधु संत तथा बड़ी संख्या में प्रदेशवासी कार्यक्रम में शामिल हुए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने महाराणा प्रताप के संघर्ष को देश की स्वतंत्र चेतना, स्वाभिमान और सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा का प्रतीक बताया।
2: हल्दीघाटी युद्ध में विजय हुई महाराणा प्रताप की, भारत के पक्ष से लड़ने वाले लोगों की। वहां लड़े थे थोड़े से मेवाड़ के वीर, मेवाड़ की जनता के साथ राणा प्रताप नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम पूरा भारत उस लड़ाई पर निगाहें टिकाए बैठा था। और उस लड़ाई ने यह तय कर दिया कि ये जो विदेशी आक्रमण है ये भारत को झुका नहीं सकते। हम भारतवासी अपने धर्म संस्कृति सहित यहाँ पहले से है, बाद में भी रहेंगे।
0: वीर योद्धा महाराणा प्रताप की जयंती पर पाली, डूंगरपुर, भरतपुर और चूरू सहित विभिन्न जिलों में पुष्पांजलि और गौरव गान कार्यक्रम रखे गए। इस उपलक्ष्य में किशनगढ़ में हेलमेट वितरण कर यातायात सुरक्षा का संदेश दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने आज साइबर अपराधियों को पैरासाइट यानी परजीवी कहा। अदालत ने कहा कि मासूम निवेशकों को ठगने वाले इन अपराधियों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने अलग अलग राज्यों में दर्ज FIR को एक साथ करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बात कही। साइबर अपराध के पीड़ित पूरे देश में फैले हुए हैं और कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे अपराधियों को जेल में रखना समाज के हित में है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से आज से नशा मुक्त भारत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। हर साल 26 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में ये पहल की गई है। इस साल की थीम नशा मुक्त भारत अभियान, विकसित भारत की पहचान रखी गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अंतिम पायदान के व्यक्ति को जनहित योजनाओं और सरकारी सेवाओं से जोड़ने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन बनाने पर जोर दिया। और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से उनके संघर्ष को नमन किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से अलवर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। अलवर जिले में इन दिनों

विकास परियोजनाओं, जल संरक्षण, कृषि जागरूकता और खेल गतिविधियों को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज जिले की चिट्ठी में बात करेंगे ऐसी ही कुछ प्रमुख गतिविधियों की। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास बीते दिनों अलवर आए। उन्होंने अलवर, खैरथल, तिजारा और कोटपूतली बहरोड जिलों से जुड़े करीब 10,000 करोड़ रुपए की लागत वाले विकास कार्यों और परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान सड़क परियोजनाओं, रेलवे से जुड़े कार्यों, क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, अलवर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास, आधुनिक बस स्टैंड निर्माण, ई बस संचालन तथा किशनगढ़ बास क्षेत्र में एयर स्ट्रिप और MOR निर्माण से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। अधिकारियों को सभी काम समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान पेयजल परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। रामजल सेतु परियोजना, अलवर भरतपुर चंबल मेगा पेयजल परियोजना, यमुना लिंक परियोजना, राणा प्रताप सागर बीसलपुर वाटर लिंक परियोजना तथा रूपारेल नदी

0: 10,000 करोड़ रुपए की लागत वाले विकास कार्यों और परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान सड़क परियोजनाओं, रेलवे से जुड़े कार्यों, क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, अलवर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास, आधुनिक बस स्टैंड निर्माण, ई बस संचालन तथा किशनगढ़ बास क्षेत्र में एयर स्ट्रिप और MOR निर्माण से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। अधिकारियों को सभी काम समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान पेयजल परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। रामजल सेतु परियोजना, अलवर भरतपुर चंबल मेगा पेयजल परियोजना, यमुना लिंक परियोजना, राणा प्रताप सागर बीसलपुर वाटर लिंक परियोजना तथा रूपारेल नदी पुनरुद्धार जैसे कार्यों की प्रगति पर चर्चा हुई। अधिकारियों को इन कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। साथ ही औद्योगिक विकास से जुड़े विषयों पर भी विचार किया गया। अलवर, भिवाड़ी और नीमराणा के औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने और नए औद्योगिक क्षेत्रों में गतिविधियां बढ़ाने पर जोर दिया गया। पर्यटन क्षेत्र में बाबा भर्तृहरि, बाबा मोहनराम, गरबाजी, लालदास महाराज मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों के विकास पर चर्चा की गई। कांकवाड़ी, कुशालगढ़, अजबगढ़, नीमराणा और तिजारा फोर्ट को पर्यटन सर्किट से जोड़ने की योजना पर भी विचार किया गया। बैठक से पहले केंद्रीय मंत्री और मुख्य सचिव ने मिनी सचिवालय परिसर में राजीविका महिला समूहों की ओर से लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन किया। उन्होंने महिलाओं से संवाद कर उनके द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों की जानकारी ली। बीते दिनों इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित 5वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर बालिका और बालक बॉक्सिंग प्रतियोगिता का समापन हुआ। वन और पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने समापन समारोह में भाग लेकर विजेता खिलाड़ियों को पदक प्रदान किए। बालिका वर्ग में अलवर की टीम विजेता रही और कोटा की टीम उपविजेता रही। वहीं बालक वर्ग में भरतपुर की टीम विजेता और अलवर की टीम उपविजेता रही। विभिन्न खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ बॉक्सर और अन्य श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए। जिले में जल संरक्षण के उद्देश्य से चलाए गए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के दौरान विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं। गंगा दशहरा के अवसर पर राजगढ़ क्षेत्र के मंगलसर बांध पर अभियान के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। वन राज्य मंत्री संजय शर्मा, प्रमुख शासन सचिव रवि जैन और जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने इस दौरान सरोवर पूजन किया। कार्यक्रम के दौरान कलश यात्रा निकाली गई और उपस्थित लोगों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई। अभियान के दौरान जल स्रोतों की साफ सफाई, जल संचयन और पौधरोपण के माध्यम से लोगों को पानी बचाने के प्रति जागरूक किया गया। अलवर जिले के बगड़ राजपूत गाँव में खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की गई। अभियान की शुरुआत के लिए केंद्रीय कृषि और कृषक कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर पहुंचे। उन्होंने कृषि गोष्ठी में भाग लेकर किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करने और परंपरागत खेती को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि खेत की सेहत और मानव स्वास्थ्य का आपस में सीधा संबंध है। कृषि अधिकारियों से किसानों को जागरूक करने और विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुँचाने को कहा। इस दौरान प्रगतिशील किसानों ने अपने अनुभव साझा किए। गुजुकी गांव के किसान महेंद्र कुमार सैनी ने पॉलीहाउस, मल्चिंग और वर्मी कंपोस्ट जैसी योजनाओं से आय बढ़ने की जानकारी दी। वहीं किसान नवाब सिंह ने मधुमक्खी पालन से होने वाले लाभों के बारे में बताया। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के अवसर पर अलवर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। वन और पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने मथुराधीश मंदिर में पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। अलवर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो 19 जून पीएम विकसित भारत रोजगार योजना रा तहत करीब 2,400 करोड़ रुपया री प्रोत्साहन राशि देवन रो कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आखिरी पांत रा हर एक जना ताई जनता रा भलारी सरकारी योजनावां और सेवावां रो फायदो पूगावन रो संकल्प दोहरायो। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव विकास और पर्यावरण ने बचावन बीच संतुलन बनावन माथे जोर तीनो। और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप री जयंती रे मौके आज राज्य में भांत भांत रा कार्यक्रम राख हर वन याद करी जिया।

0: समाचारों सागे मैं सुदर्शन नाहर अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो 19 जून ने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना PMVBRY रातेत करीब 2400 करोड़ रुपयारी रकम पात्र लोगों ने देवन रो कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री रा दफ्तर सेवा तीर्थ माए रख्या जावन वाला राष्ट्रीय कार्यक्रम रे जरिए आ रकम दी जावेला। लारला साल अगस्त महीना माए चलाई ची ई योजना रो मकसद नौकरी धंधा रा मौका माए बढ़ोतरी सागे सामाजिक हिफाजत रो दायरो बढ़ावनो है। PMVBRY उन देश माए करीब 15 लाख जना ने काम धंधो करण माए मदद मिलेला। ई योजना रा तहत पहले दफा शामिल होवन वाला ने 15,000 रुपया ताईरी रकम दो किश्तां माए दी जावे है। इस आगे नौकरी देवन वाला ने हर अतिरिक्त कर्मचारी सारू हर महीना 3,000 रुपया ताईरी रकम मिले है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि री 23वीं किश्त 20 जून न जारी करी जावेला। पीएम किसान सम्मान निधि री ई किश्त रे जरिए 9,44,00,000 बत्ता पात्र किसाना रा खाता माए 18,880 करोड़ रुपये बत्ती रकम जमा कराई जावेला। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि रा तहत किसाना ने हर साल 2,000 रुपया री 3 किश्तां माए कुल 6,000 रुपया सालाना री मदद दी जावे है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज उदयपुर माए लगाई जा शहरी सेवा शिविर रो जायजो लीनो। श्री शर्मा उदयपुर विकास प्राधिकरण परिसर माए लगाई जा शिविर माए पट्टा सर्टिफिकेट और दिव्यांगजन ने मदद री रकम रा चेक और जरूरी साजो सामान दीना। इस दौरान वह शिविर माए मौजूद लोगों सागे बातचीत कर और विचार पूछा। मुख्यमंत्री जनताओं वारा आरे सारे रा जरूरतमंद लोगों ने शिविरां ताई पोगावन माए मदद करन री अरज कीनी। वह कहो कि जनता रा नुमाइंदा अहलकारा कर्मचारियां और जनता री भागीदारी हुई शिविर सार्थक बनेला। मुख्यमंत्री कहो कि राज्य सरकार आखिरी पांत रा हर एक जना ताई जनता रा भलारी योजनावां और सरकारी सेवावां रो फायदो पोगावनो तय कीनो है।
1: मित्रों, इन शिविरों के माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारे शहरी क्षेत्रों में जो भी हमारे वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको उनका लाभ मिलना चाहिए, चाहे वो नामांतरण का हो, शुद्धिकरण का हो, बंटवारे का हो, पट्टों का हो, उसके घर में किसी तरह से कोई परेशानी जैसे नाली, सड़क, खरंजा, सिवरेज खराब, बिजली की व्यवस्था, ये सारे विषय उसमें आते हैं। हम चाहते हैं कि इन शिविरों का आम जन को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले।
0: पांचना बंधा रो पानी कमांड एरिया री नहरा माए छोड़न री मांग करता था का किसान सवाई माधोपुर जिला रा खंडीप गांव माए प्रदर्शन कर रहा है। इन बीच कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मुलाकात कर और पानी छोड़न रे बारा माए वन कागज सौंपियो। वह मुख्यमंत्री बातचीत कर और समस्या हल करण और नहरा माए बेगोई पानी छोड़ बारी अरज कीनी। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ई मामला माए जातिगत सियासत नी करण बाबत कहो है। लोकसभा माए विपखरा नेता राहुल गांधी आज कोटा पधारिया। मारो कांग्रेस रा कई आला नेता स्वागत कीनो। राहुल गांधी रो भणाई लिखाई हूं जुड़ी व्यवस्था माए सुधार और परीक्षावां माए साफ कोई रबारा माए विद्यार्थियों सागे बातचीत करण रो कार्यक्रम है। इन बीच राज्य रा पहली वाला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोटा मेडिकल कॉलेज रा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रो दौरो कर और वठे भर्ती जापा वाली लुगाइयां और वारा परिवार वाला सागे बातचीत कर और वठे इलाज रा सुबिता ने बारा माए जानकारी लीनी। बांसवाड़ाऊ गुजरात माए सूरत जा रही एक बस आज तड़के वडोदरा कने हादसा रो शिकार फेंकी। इन कारण 6 जना री मौत वेगी और 27 मुसाफिर जख्मी फेंकिया। जख्मी लोगों ने वडोदरा रा SSG अस्पताल माए भर्ती कराई चिया है। हादसा रे कारण मरण वाला लोग बांसवाड़ा रा रहवासी हा। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज़ और फेसबुक माथे AIR न्यूज़ राजस्थान पर आई सुन सको हो।

0: आज विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस है। ओ दिन रेगिस्तान रा पसारा और सूखा रा असर रो सामो करण सारू जाग जगावन रा मकसद मनायो जावे है। ई मौके केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव नई दिल्ली में राखी जा कार्यक्रम में कहो कि सरकार 2,60,00,000 हेक्टेयर जमीन है उपजाऊ बनावनो तेकीनो है। श्री यादव कहो कि मिट्टी में खरोपन बधन री शंका वाला हलका में प्राकृतिक खेती ने बढ़ावो दियो जावनो चाहिए। वे विकास और पर्यावरण री हिफाजत बीच संतुलन बनावन री जरूरत माथे जोर दिनो।
1: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कॉप 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षो में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
0: जन आधार कार्ड अब डिजी लॉकर माथे हासिल करियो जा सके है। राज्य सरकार और डिजी लॉकर बीच व्या करार पाछे ओ सुबी तो मुहैया कराई चो है। इन पाछे अब डिजी लॉकर ऐप या वेबसाइट माथे लॉग इन कर और जन आधार रो कागज डाउनलोड और सुरक्षित रखियो जा सके है। इस आगे जन आधार जुड़ी न्यारी न्यारी सरकारी योजनावां और सेवावां सारू इनरी डिजिटल कॉपी काम ली जा सकेला। ध्यान जोग है कि राज्य में पिरवारां री पिछाण सारू जन आधार खास कागज है। प्रदेश में जन्मताई बच्चा रे मर जावन री रेट IMR लगातार कम फैर रही है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का न्यू मिली जानकारी रे मुजब शिशु मृत्यु दर में एक अंक री कमी दर्ज करी ची है। स्वास्थ्य विभाग में शिशु स्वास्थ्य रो काम देख रहा परियोजना निदेशक डॉक्टर प्रदीप चौधरी आकाशवाणी ने बतायो कि लगातार स्वास्थ्य जांच, टीका लगावन और स्वास्थ्य जुड़िया सुविधा में बढ़ोतरियों बच्चा ने बेहतर देखभाल मिल रही है।
2: हमारे राज्य में जो नवजातों की जो बीमार नवजात है स्पेशली उनकी जो उपचार के लिए जो सुविधाओं का विस्तार हुआ है, अभी राज्य में 71 स्पेशल न्यूबोर्न केयर यूनिट्स जिनको सामान्य भाषा में आप नर्सरी भी बोलते हैं और लगभग 1,20,000 के लगभग नवजात वित्तीय वर्ष 25-26 में इन यूनिट्स में भर्ती कर उपचारित किए गए थे। उसके अलावा आशाओं द्वारा घर घर जाकर जो नवजात होते हैं उनकी होम बेस्ड न्यूबोर्न केयर विजिट किया जाना, उसके बाद 3, 6, 9, 12, 15 महीने पे भी बच्चों की विजिट आशाओं द्वारा की जाती है, उनका टीकाकरण इंश्योर किया जाता है। टीकाकरण का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है शिशु मृत्यु दर को कम करने में।
0: हिम्मत अर खुदरा मान री अमर निशानी महाराणा प्रताप री जयंती अर हल्दी घाटी री लड़ाई माए अकबर रे खिलाफ जीत रा 450 साल पूरा फेवन रे मौके आज प्रदेश माए कई कार्यक्रम रखी जिया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े भारतीय क्षत्रिय महासंघ री ओर जयपुर माए राखी जिया मान जलसा माए महाराणा प्रताप ने याद करता थका वारा आदर्शा माथ चालन बाबत कहो। श्री बागड़े कहो कि महाराणा प्रताप री जिंदगी अन्याय और अनैतिकताओं लड़बारी सीख देवे है। महाराणा प्रताप री जयंती रे मौके उदयपुर माए शोभा यात्रा निकाली जी और राष्ट्र चेतना संकल्प सभा राखी जी। कार्यक्रम माए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा न्यारी न्यारी धार्मिक पीठा रा साधु संत और मोटी तादाद माए लोग शामिल भया। ये मौके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रा सर संघ चालक मोहन भागवत महाराणा प्रताप री लड़ाई ने देश री स्वतंत्र चेतना खुदरा मान और सांस्कृतिक अस्मिता री हिफाजत री निशानी बताई।
3: हल्दी घाटी युद्ध में विजय हुई महाराणा प्रताप की, भारत के पक्ष से लड़ने वाले लोगों की, वहां लड़े थे थोड़े से मेवाड़ के वीर, मेवाड़ की जनता के साथ राणा प्रताप नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरा भारत उस लड़ाई पर निगाहें टिकाए बैठा था और उस लड़ाई ने यह तय कर दिया कि ये जो विदेशी आक्रमण है ये भारत को झुका नहीं सकता। हम भारतवासी अपने धर्म संस्कृति सहित यहाँ पहले से है, बाद में भी रहेंगे।
0: वीर योद्धा महाराणा प्रताप री जयंती रे मौके पाली समेत न्यारा न्यारा जिला माए फूल चढ़ावन और गौरव गान रा कार्यक्रम राखी जिया। ये मौके सलुम्बर जिला रा चावंड माए महाराणा प्रताप स्मारक स्थल माथे महाराणा प्रताप री मूर्त माथे फूल माला चढ़ाई जी और खास कार्यक्रम राखी जियो। पाली माए राखी जा कार्यक्रम माए पशुपालन और देवस्थान मंत्री जो

0: छोटाराम कुमावत, महाराणा प्रताप री मूरत माथे सिरधारा फूल चढ़ाया वठे न्यारी न्यारी सामाजिक संस्थावां री ओरों जुलूस और रैली निकाली जी। अजमेर जिला रा किशनगढ़ माए स्कूटर मोटरसाइकिल चलावन वाला ने हेलमेट देर यातायात सुरक्षा रो संदेश दियो चियो। झुंझुनू माए आज नुआ अग्निवीरा रो मान करी चियो। ई मौके राखी जिया कार्यक्रम माए जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग कहो कि झुंझुनू जिलो हिम्मत और बहादुरी सारू न्यारी ओळखाण राखे है और वठाऊ फौज माए भर्ती वैर देश री सेवा करण री रीत रही है। वह कहो कि ऐड़ा जलसा नौजवाना ने आगे बढ़वारी सीख देवे है। अरब मौसम राज्य में कई ठोणा लाड़ला दिना भी बिरखाऊ पारो उतरियो है। कठे कठे तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक कम थियो। चौमासाऊ पहली री बिरखारा असर अब आखा राज्य में लू रो असर खत्म वेक्यो है। मौसम विभाग रे मुजब काल श्री गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, टोंक, बारां और करौली समेत 20 जिला में ऑरेंज और अलवर, भरतपुर, अजमेर, डीग और जयपुर समेत 16 जिला में बादलों री गाज और बिजलियां री चमक सागे बरसात वेवण और जोरदार बायरो बाजण रो येलो अलर्ट जारी कर चेताई चियो है। आखिर में खास समाचार एक फेर सुन ली रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो 19 जून ने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना रा तहत करीब 2400 करोड़ रुपया री प्रोत्साहन राशि देवण रो कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आखिरी पांत रा हरेक जना ताई जनता रा भलारी सरकारी योजनावा और सेवावा रो फायदो पुगावण रो संकल्प दोहरायो। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव विकास और पर्यावरण ने बचावण बीच संतुलन बनावण माथे जोर दीनो। और महाराणा प्रताप री जयंती रे मौके आज राज्य में भांत भांत रा कार्यक्रम राखी चिया। इसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। शाम के 7 बजे हैं। अब आप हैंडिग्ले लिट्स क्रिकेट स्टेडियम इंग्लैंड में आयोजित आईसीसी T20 महिला क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत भारत और नीदरलैंड के बीच खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री सुनेंगे। ये प्रसारण हमारे मीडियम वेव चैनल FM बैंड और DRM चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर उपलब्ध रहेंगे। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर मैच का प्रसारण नहीं होगा। मैच समाप्ति तक आप सुन पाएंगे। इस दौरान 8:45 पर हिंदी में समाचार और 9 बजे अंग्रेजी में समाचार होंगे। आइए क्रिकेट मैच की कमेंट्री सुनें।

0: टी20 क्रिकेट विश्व कप के अंतर्गत अब यह भारत और नीदरलैंड के बीच खेले जा रहे क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री सुन रहे थे। यह प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जा रहा था। आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज़, FM बैंड 100.1 मेगा हर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। इस समय रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब आप बारी बारी से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे। समाचारों के बाद क्रिकेट मैच का प्रसारण जारी रहेगा। आइए समाचारों के लिए दिल्ली स्टूडियो चलें।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के

0: भारी बारिश से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे। समाचारों के बाद क्रिकेट मैच का प्रसारण जारी रहेगा। आइए समाचारों के लिए दिल्ली स्टूडियो चलें।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की और लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवियो में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
2: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं।
1: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के एवियो शहर की दो दिन की यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही। इस दौरान प्रधानमंत्री ने G7 के विभिन्न आउटरीच सत्रों में हिस्सा लिया, जहां भारत को एक साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। यह G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की लगातार सातवीं भागीदारी थी। इस महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर भारत की निरंतर उपस्थिति यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि देश एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अब नई दिल्ली की ओर देख रहा है। आउटरीच सत्रों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस महत्वपूर्ण मंच के समक्ष ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से उठाया। कल के एक सत्र में उन्होंने तेजी से जुड़ती हुई इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए भरोसे के महत्व को रेखांकित किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। आज के एक सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को ऐसे तंत्र विकसित करने की जरूरत है जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान कर सके। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो, फ्रांस।
1: पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री कल

0: टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी है। इस पर 493 करोड़ रुपये की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपये की लागत से सोमताने चिखली कॉर्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 7वीं बैठक में ये निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिए जाने तथा वंचित वर्गों को आवास देने को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को अपने विकास पथ का केंद्र बनाया है। श्री नड्डा ने कहा कि बढ़ी हुई सैन्य तैयारियों और स्वदेशी विनिर्माण पर विशेष ध्यान देने के कारण देश के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत इस तिमाही के अंत तक 300 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ऊर्जा परिवर्तन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
3: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
2: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा,
4: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी संकरा हुआ करता था।

0: था जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
1: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देश भर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के हित में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में लगभग 32,000 महिलाओं को उनके प्रवासी भारतीय नागरिकों NRI पतियों ने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये राज्य में NRI विवाह धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौती है। गुजरात में वडोदरा में तड़के एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दोपहर सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार की 6 महिलाओं की मौत हो गई और 3 महिलाएं घायल हो गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों दुर्घटनाओं पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी तेज वर्षा की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सुबोध मिश्र।
4: सेंसेक्स 347 अंक बढ़कर 77,156 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 97 अंक ऊपर 24,086 पर पहुंच गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के मुकाबले 3 पैसे बढ़कर ₹94.53 पर बंद हुआ।
2: और अब बात खेलों की। लखनऊ में दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में अफगानिस्तान ने ताज़ा समाचार मिलने तक 39वें ओवर में 7 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। लीड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 210 रन का लक्ष्य दिया है। ताज़ा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 7 रन बना लिए हैं। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। भारत ने विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आज से 10 दिन के नशा मुक्त भारत सप्ताह का उद्घाटन किया। डॉक्टर कुमार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने में सामुदायिक भागीदारी, युवा सहभागिता और अंतर मंत्रालयी समन्वय के महत्व पर बल दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। और मौसम विभाग ने कल देश के पूर्व

0: rainfall over parts of northeast India and sub-Himalayan West Bengal tomorrow. And in men's cricket, Afghanistan chased target of 403 runs set by India in second ODI of three-match series in Lucknow. That is all in the news at 9. Good night.
1: आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। रात्रि के 9:15 हुए हैं। अब आप हैंडिंगले लीड्स में खेले जाने वाले T20 महिला क्रिकेट विश्व कप के अंतर्गत भारत और नीदरलैंड के बीच खेले जा रहे क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनेंगे। ये कमेंट्री हमारे मीडियम वेव चैनल DRM चैनल 909 किलो हर्ट्ज और FM बैंड 100.1 मेगा हर्ट्ज पर उपलब्ध रहेगी। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर मैच का प्रसारण नहीं होगा। आइए क्रिकेट कमेंट्री सुनें।

अभी आप हेडिंग्ले लिट्स क्रिकेट स्टेडियम से T20 महिला विश्व कप के अंतर्गत भारत और नीदरलैंड के बीच खेले गए मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री सुन रहे थे। आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। लीजिए फिल्म संगीत सुनिए।

नूरी फिल्म का गीत आपने सुना, जगजीत और पमेला चोपड़ा का गाया हुआ, बोल जान निसार अख्तर के थे, संगीतकार थे खयाम।

0: दिन के 11 बजने वाले हैं। अब आप बारी बारी से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एमियो में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
2: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में

0: सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंस, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूँ।
1: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। G7 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने 3 महत्वपूर्ण घोषणा पत्र अपनाए हैं। इनमें संतुलित आर्थिक विकास, बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में शामिल होंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कार्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।
2: 2 प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और दे हैव स्टार्टेड इन गुड फुल स्विंग। 3rd प्लांट का इनॉग्रेशन जुलाई में होगा एंड बाय दिसंबर 4th प्लांट ऑफ सेमीकंडक्टर्स विल बी फुल्ली फंक्शनल कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग इन आवर कंट्री।
1: इस बीच श्री वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। भारत ने लखनऊ में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रन बनाए। शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारी खेली। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड को 95 रन से हरा दिया है। लीड्स में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।